बन बन रहा है। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज के संदेश। विद्वानों का कथन है, मुस्कान एक ऐसा उपहार है जिसे बिना कुछ खर्च किए भी किसी को खुशी दी जा सकती है। ये था आज का संदेश। आइए अब सुनते हैं

इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज दोपहर 2 बजे, 8:30 पर सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम, 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार पृथ्वीराज कपूर पर, प्रस्तुति है रमेश गोखले की। सुबह 10 बजे पिटारा में सुनिए हेलो फरमाइश, संवादन है मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। 11 बजे सुनिए रंग तरंग कार्यक्रम, 12:05 से सजेगी यादों की रंग तरंग, 1 बजे से तय करेंगे सुरीला सफर, 2:30 पर सदाबहार नगमे,

किसी अनुश्री पाठक की। 4 बजे तुकाराम सुनिए ये तो भरी कहानी, कहानी है रिश्ते, लेखन है दीदी जैन का, संपादन है काजल भद्रवी का, प्रस्तुति जुबैर खान की। 5:30 का सुनिए तराने नए पुराने। संध्या रंजन 7 बजे सुनिए जयमाला कार्यक्रम। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए गुलदस्ता। 8 बजे हवा महल में सुनिए झलकी, एक दिन का प्यार, लेखन है V.M. आनंद का, निर्देशन है सुदर्शन कुमार का। 8:15 पर रात्रि चित्रलोक। 9 बजे सुनिए आपके लिए 9:30 पर आज के फनकार, कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता पंकज कपूर पर, प्रस्तुति रमेश गोखले की। 10 बजे सुनिए छाया गीत, आलेख और स्वर है ज्योति गौर का, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। और 10:30 पर आप सुनेंगे ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित

ऐसी चोट खाकर और मर्मान तक पीड़ा की किस स्थिति में भरत छोटे भाई शत्रुघ्न तथा दल बल सहित तीर्थराज कयास पहुंचे हैं, इसकी कथा वो भरद्वाज ऋषि को सुना चुके हैं। अयोध्या के उनके साथ आया जनसमूह अब भरद्वाज जी का अतिथि है। इतने बड़े समाज के स्वागत सत्कार की ऋषि की चिंता देख सभी ऋषि सिद्धियों ने उपस्थित होकर सारे प्रबंध कर दिए। वसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंधित वायु प्रवाहित है, सबको सभी कुछ

यीशु की आज्ञा का आदर करने के लिए भोग ऐश्वर्य के सभी साधनों के साथ भरत रहे अवश्य, किंतु उन्होंने उनका स्पर्श तक नहीं किया।

कविता कार्यक्रम में आजकल आप सुन रहे हैं शकुंतला नरसिम्हन द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिसमें कर्नाटक संगीत पद्धति में स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों की चर्चा की जा रही है। कल आपने सुना था राग दरबारी, आज प्रस्तुत है राग भैरवी।

असल मैं बता रही हूँ हिंदी भाषा में महाराजा स्वाति सरनाय की कुछ कृतियाँ जिनमें उत्तर और दक्षिण का संगम है। स्वाति सरनाय थे दक्षिण के केरला प्रांत के और इन कृतियों को गाने की विधि कर्नाटक पद्धति से जुड़ी हुई है, लेकिन साहित्य है हिंदी में और राग है हिंदुस्तानी पद्धति से। मैं राग वृंदावनी सारंग, दरबारी और धनाश्री में कृतियां पेश कर चुकी हूँ, तो लीजिए आज सुनाती हूँ भैरवी राग में एक रचना। उससे पहले महाराजा स्वाति सरनाय के बारे में दो चार शब्द और भी कहूँ। स्वाति सरनाय और संत त्यागराजा मुक्ति स्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री जो कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति कहलाते थे, सब समकालीन वाद्यकार थे। स्वाति सरनाय त्रावणकोर प्रांत के महाराजा थे और उन्होंने संगीत के क्षेत्र में अपने शिष्य नहीं तैयार किए। महाराजा थे तो शिष्य नहीं ले सकते थे शायद, लेकिन उनकी रचनाएं उतनी ही श्रेष्ठ मानी जाती हैं जितने त्रिमूर्ति वाद्यकारों का। कहा जाता है कि वे अपनी मातृभाषा मलयालम के अलावा अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, उर्दू और फारसी में भी बहुत ही निपुण थे। एक पुस्तक है ग्रेट मास्टर्स ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक जिसमें स्वाति सरनाय का भी नाम शामिल किया गया है। उनके दक्षिणवासी होते हुए भी उन्होंने उत्तर भारतीय संगीत में काफी रुचि और पांडित्य दिखाई। उत्तर के तीन मशहूर संगीतकार स्वाति सरनाय के दरबार में यानी कोर्ट म्यूजिशियन के रूप में जुड़े हुए थे। वे थे ग्वालियर के अलाउद्दीन और लक्ष्मण दास और पंजाब के सुलेमान। यह था सन 1829 से 47 तक की बात। स्वाति सरनाय ने शास्त्रीय संगीत के बारे में एक पुस्तक भी लिखी। मोहिनीअट्टम और कथकली नृत्य के लिए इन्होंने काफी बंदिशें बनाई हैं। हाँ, यह बताना भूल गई कि स्वाति सरनाय ने न केवल ध्रुपद बल्कि टप्पा भी कंपोज किए थे, लेकिन ये मिल नहीं रहे हैं आजकल। तो आज आपको सुनाना चाहती हूँ भैरवी राग में एक कृति जो कहरवा काल में है। एक और बात यहाँ बताना चाहूंगी कि भैरवी जो दक्षिण में जाते हैं वो उत्तर भारतीय भैरवी से एकदम अलग है। कर्नाटक पद्धति में जो भैरवी जाते हैं उसमें काफी खास के स्वर लगते हैं। मैं अब तो कृति जो पेश करने जा रही हूँ वह उत्तर भारतीय पद्धति के भैरवी राग में रचित है। तो सुनिए रामचंद्र प्रभु राग भैरवी में।

0: के कमलेश्वर और दिलराज बाजी, कर्नाटक संगीत पद्धति में स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों की चर्चा के अंतर्गत ये था राग शैली।
1: कवि भारती के संग्रहालय के प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपा।

ಸಾಕಾಗಲ್ಲ.

0: आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारे लाल से संगीत के बदल गाना बोल थे प्रदीप से। अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मिथुन प्रदीप साझे कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे
0: सुनना न भूले। कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के।

से बोल रही हूँ। विविध भारती की सती सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को

ชอบให้มากัน

Yeah, didn't you?

di voi, sia nel giorno di incasso in vita.

0: चीज बुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की बरसात पर 2 जून को।

सुन रहे थे आप ये गाना मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में योगेश की बोल।

God to be back, send you.

0: मसीह के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे। तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे
0: सुनना न भूले। कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम तक।

का मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को ये तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।

सचिव सरजई सोलजी से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री नवीन ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल

0: संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरल में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एक ब्यूरो सीबीआई ने कल कृष्ण शर्मा हत्या मामले में भोपाल के गिरीवाला सिंह को गिरफ्तार किया है। और सत्र न्यायाधीश है हमारे संवाददाता से।
1: भोपाल में कृष्ण शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज उपनिषा के साथ गिरीवाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से 1 दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरीवाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कतारा हिल्स इलाके में नीचा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों के 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध है कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति
2: हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और इसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित, जिसके बाद उपराष्ट्रपति दावत देने में यूनिवर्सिटी जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक के करीब हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालन को मौजूदा स्थिति पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ उड़ाने बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है।

सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। तीन मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्स फोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने

उत्तर जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा।

सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता हिंदी अनुवाद पाठ्यक्रम प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: छत्तीसगढ़ में इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगस्त महीने से बंग भंग विरोधी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन भड़का हुआ था। उसी समय प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए। कुछ रियासतों के साथ ब्रिटिश समर्थक प्रतिष्ठित लोगों ने खुशी जताते हुए उनका स्वागत किया। इतना ही नहीं, इस वाराणसी अधिवेशन में उनके भारत आगमन पर आनंद व्यक्त करते हुए इस आशय का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे रविंद्रनाथ को कांग्रेस की यह राजभक्ति बिल्कुल पसंद नहीं आई। वे लिखते हैं,
1: राजपुत्र मुल्क के सभी पात्रों के पुत्रों ने उन्हें घेर लिया। अन्य कोई भी वहां प्रवेश न पा सका। इस घेरे पर कोतवाल पुत्रों का पहरा लग गया।

की नरम भाषा धीरे धीरे बदलने लगी। बंग भंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत में ही अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों की खबरें देश भर में पहुंच चुकी थी। इस आंदोलन में बंगाली जनता के पीछे देश की संपूर्ण भारतीय जनता खड़ी है, इसका एहसास इस अधिवेशन से हुआ। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर बंगाल के विभाजन को रद्द करने का आह्वान ब्रिटिश राजसत्ता से किया गया।

वचन स्मरणीय रहा। रविन्द्रनाथ की बड़ी बहन स्वर्ण कुमारी की बेटी सरला देवी चौधरानी और उनके पति रामभुज दत्त इस अधिवेशन में उपस्थित थे।

0: इन शब्दों की जगह सब को स्कंध शब्द बदल दिए। वंदे मातरम के शब्दों में किया गया ये पहला बदलाव था। इस अधिवेशन में एक और ऐतिहासिक घटना घटी, वो ये कि भारत के पहले राष्ट्रध्वज का प्रदर्शन इसी अधिवेशन में पहली बार हुआ। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी एक ध्वज के नीचे नहीं लड़ा गया था। ब्रिटिश राज सत्ता से जूझते समय अपनी स्वतंत्र पहचान वाला भारत का राष्ट्रध्वज होना चाहिए, ये विचार सन 1900 के बाद सामने आया। 1905 में बनारस में हुए इस कांग्रेस अधिवेशन में पास के एक अलग मंडप में स्वदेशी वस्तुओं की एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस प्रदर्शनी के बीचों बीच भारत का कहा जाने वाला पहला ध्वज जानबूझकर प्रदर्शित किया गया था। विशेष बात ये कि पूरी तरह भारतीय संकल्पना वाले इस ध्वज की मूल परिकल्पना जन्म से विदेशी और मन से पूरी तरह भारतीय बन चुकी मार्गरेट नोबल यानी भगिनी निवेदिता की थी।
1: लाल रंग के इस वर्गाकार ध्वज पर बीच में इंद्र के वज्र का पीले रंग का चित्र था। इस चिन्ह के एक ओर वंदे और दूसरी ओर मातरम, ये बांग्ला लिपि के शब्द थे। ध्वज के किनारों पर 108 पीली ज्योतियां थीं। यह ध्वज उस प्रदर्शनी में केवल प्रदर्शित हुआ, उसे कहीं भी सहराया नहीं गया, इसलिए इसे पहले ध्वज का दर्जा नहीं मिल सकता। फिर भी तैयार किया गया यह आद्य राष्ट्र ध्वज ही माना जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन रहे वंदे मातरम शब्दों का इस पहले ध्वज पर उपयोग किया जाना सबसे महत्वपूर्ण बात है। वंदे मातरम शब्दों का महत्व और सामर्थ्य जैसे जैसे सामान्य जनता के ध्यान में आने लगा, वैसे वैसे अंग्रेज सरकार को उसका उपद्रव महसूस होने लगा। सरकार ने वंदे मातरम गाने या शब्द उच्चारने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध के कारण वंदे मातरम का प्रभाव और बढ़ने लगा। बंग भंग विरोधी आंदोलन को वंदे मातरम, स्वदेशी का समर्थन, विदेशी माल का बहिष्कार, इन बातों ने

0: विरोध था उस सभा में उसकी हुई तीव्र निंदा और स्वदेशी का आग्रह ये बातें पूरे देश में फैल गईं। उसमें से पहली बड़ी चिंगारी महाराष्ट्र के पुणे में गिरी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में बंगाल के विभाजन पर और करगिल पर
1: इस सभा में समाचार पत्र काल के संपादक शिवराम महादेव परांजपे और नरसी केतर उपस्थित थे। इस सभा के बाद बंगाल से लौटे लोकमान्य तिलक तक ये बात पहुंची तो उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली और बड़े पैमाने पर करने का सुझाव दिया। 7 अक्टूबर 1905 के दिन लकड़ी पुल के पास मुठा नदी के किनारे पूरे पुणे में घूमकर इकट्ठा किए गए और जुलूस के साथ बड़ी गाड़ी पर लाद कर वहाँ लाए गए विदेशी वस्त्रों की होली की गई। इस होली की आग ब्रिटिशों के लंदन स्थित राज सिंहासन तक पहुंचे बिना नहीं रहेगी, ऐसा भाषण उस समय लोकमान्य तिलक ने दिया। वंदे मातरम की घोषणाओं के बीच जलती लपटों ने पूरा वातावरण उज्ज्वल कर

नीति और कड़ाई से लागू करने लगे। इसी आंदोलन के कारण पूरे विश्व को ब्रिटिश राजसत्ता के उन्मत्त, अमानवीय और हिंसक व्यवहार का दर्शन हुआ। उसके लिए निमित्त बने वे वंदे मातरम शब्द और बारिसाल में हुआ राष्ट्रीय सभा के युवाओं

लिए।

0: jam packed with meat. 50 pieces of deep fried amazoy, white pepper, jam patrikar or mandakini dosi. Gaika, Aparna Kelkar, Sandhikar, Ajit Parad. Tekniki Sahyog, Kiran Bang or Anish Gupta. Prakriti Sahyog, Aswani Puri.
1: खुशियों की रंगोली, नृत्य की खनक, यादों की महक, बातों में भूलेगी आत्मीयता की रोल।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान

fait, il a fait sa vie.

Sí, entonces.

Thank you.

जाना। अरिजीत सिंह की आवाज में कौशल मिली

साथ साथ इनका टेलीविजन सीरियल ऑफिस ऑफिस भी बहुत चर्चित रहा। हम बात कर रहे हैं एक्टर पंकज कपूर की।

पंकज कपूर नजर आए अपने बेटे शाहिद कपूर के साथ। उनकी जिंदगी के बारे में कुछ बातें आज के फनकार कार्यक्रम में रात 9:30 पर। आप सुन रहे हैं 10 फिल्म से ये गाना शान और केके की आवाज में।

0: आएंगे अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम चलाएंगे स्मृतियों के बीच
2: बधाई हो बधाई
0: जन्मदिन की गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग। हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, जरूर सुनिएगा 2 जून।

0: पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद केस सीधा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे।
0: उन्होंने कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

काम जीरो और हमारी अधूरी कहानी जैसी सुनने में किया गया। हमारी अधूरी कहानी के टाइटल ट्रैक की शुरुआत उनकी बेहद खूबसूरत गजल की पंक्तियों से शुरू होती है। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, वक्त कुछ मेरे चेहरे को परखाएगा।

सामुदायिक नमक जरूरी है, इसीलिए अखबार नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बहुत से बुद्धि का विकास।

अभिनय से समृद्ध किया। रंगमंच और अभिनय के इतिहास पुरुष कहे जाने वाले एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने मुंबई में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की, वो है आज के फनकार

अभिनेता है जिन्होंने अपनी कड़क आवाज, रौबदार भाव भंगिमाओं और दमदार अभिनय के बल पर लगभग 4 दशकों तक सिनेमा के दर्शकों पर राज किया।

सौ साठ से बनी फिल्म मुगले आसम में अकबर के किरदार को काल्पनिक बनाने वाले पृथ्वीराज कपूर आज भी फिल्मी दीवानों के दिलों पर राज करने वाले शहंशाह हैं। रवि ने शहंशाह का मुगले आजम फिल्म का ये संवाद भला किसी

जमींदार परिवार में उनका जन्म हुआ था। उन्हें हनुमान से शिक्षा वे समझ के हनुमान कॉलेज में पढ़ी शुरू कर दिया था। 18 वर्ष में ही उनका विवाह कर दिया था, लेकिन अपने 3 बच्चों को अपनी पत्नी के सुपुर्द कर वे पेशावर से सपनों की नगरी मुंबई आ गए और यहाँ वे इम्पीरियल फिल्म कंपनी से जुड़ गए। 1931 में भारत की पहली बोलती फिल्म आरा मारा में पृथ्वीराज कपूर ने सह अभिनेता का किरदार निभाया। सन 1933 में पृथ्वीराज कपूर कोलकाता के मशहूर न्यू थिएटर से जुड़ गए। 1933 में ही प्रदर्शित फिल्म राज रानी और 1934 में देवकी बोस की फिल्म सीता की कामयाबी के बाद पृथ्वीराज कपूर ने बतौर अभिनेता अपनी पहचान बनाई। इसके बाद उन्होंने न्यू थिएटर की कई फिल्मों में अभिनय किया, मिसाल के तौर पर 1937 की फिल्म मंजिल और 1937 की फिल्म प्रेसिडेंट। सन 1937 में आई फिल्म विद्यापति जिसमें पृथ्वीराज कपूर के अभिनय की खूब प्रशंसा हुई। रंजीत मूवी टोन के बैनर तले निर्मित 1940 में आई फिल्म पागल में उन्होंने एंटी हीरो की भूमिका निभाई। सन 1941 में सोरा मोदी की फिल्म सिकंदर के बाद पृथ्वीराज कपूर अभिनय की बुलंदी पर पहुंच गए।

तक की ऐसे शासन की फिल्म तीन बहुरानिया पृथ्वीराज कपूर के अभिनय की वजह से यादगार मानी जाती है। फिल्म तीन बहुरानिया में बच्चों के साथ डांस और मौज मस्ती करते नजर आते हैं पृथ्वीराज

1931 में शेक्सपियर के नाटक पेश करने वाली ग्रांड एंडरसन थिएटर कंपनी से जुड़ गए। 1944 में उन्होंने अपनी लागत से खुद

कई बारीक पहलुओं को अपने सशक्त अभिनय से साकार करने वाले इस बेमिसाल फनकार को कैंसर जैसे भयंकर मर्ज ने घेर लिया और 29 मई 1972 को इस्पानी दुनिया को वे

तेरी बारी, आकाश बारी और देव बदोने के लिए हम आ रहे हैं। बस एक गेट पर हमारे स्टेशन लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर।

he's gone ahead. Oh. Now stop bending. Legends, original

जिनके ग्यारह बजे हैं दोस्तों, और ये वक्त होता है कार्यक्रम

कार्यक्रम के कुछ कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का स्वागत करती हूँ मैं कार्यक्रम में और इस सफर में मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त दुर्गा। स्वीकार कीजिए मेरा सप्रेम नमस्कार। जो सवाल तारीख है उनके लिए आज का दिन कैलेंडर का कोई आम दिन नहीं है। आज पूरा ये दिन गवाह है इंसानी हौसले और कभी न हार मानने वाले जज्बे का। आज ही के दिन साल 1953 में दो जाबाजों ने वो कर दिखाया जो दुनिया के नामुमकिन लगता था। नेपाल के एस्टन मोर्गे शेरपा और न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलरी ने पहली बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की। यहाँ दोस्तों उनकी इस ऐतिहासिक कामयाबी को सलाम करने के लिए

बर्तन को अपनी भूल हो गई वो कारनामा फिर दिखाया जो एक नौके ने उस दिन बर्फ से को इस सफलता के लिए ब्रिटिश महारानी ने नाइट उपाधि दी थी।

ऊंचे पहाड़ को पार कर सकते हैं। आज इस मौके पर हम उन सभी पर्वतारोहियों को सलाम करते हैं जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर देश के तिरंगे और दुनिया के अलग अलग देशों के झंडे उस चोट पर लहराए। साथ ही उन कृपाओं का भी शुक्रिया करते हैं जिनके बिना एवरेस्ट को छूना सिर्फ एक सपना बनते रह जाता है। तो दोस्तों, अपने आप से आज एक वादा कीजिए, आपकी जिंदगी का एवरेस्ट चाहे जो भी हो, कोई मुश्किल एग्जाम, कोई भी आपका गोल या कोई पर्सनल चुनौती बढ़ा है, क्योंकि चोटी कितनी भी ऊंची हो, रास्ता पैरों के नीचे ही होता है।

सी और पवित्र कर्मी पुरस्कार से भी नवाजा गया। उन्होंने हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे राह

फायदा मंद पॉइंट बनेगा मेरे पर आप इस वक्त जुड़े हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर के साथ। और अब थोड़ी सी सेहत की बातें कर ली जाए दोस्तों। आज की तारीख सेहत के बारे में कुछ खास चीज रखती है। जी हाँ दोस्तों, आज है वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ यानी कि विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस। सब दोस्तों जब सुबह सुबह हम उठते हैं और अगर हमारा पेट साफ ना हो या फिर ब्लोटिंग जैसा फील हो रहा हो तो हमारा मूड भी सही नहीं रहता। बिल्कुल सही खाना नहीं दोस्तों, क्योंकि हमारी सेहत का सीधा रास्ता हमारे पेट से होकर गुजरता है। और लेकिन आज की जो ये भाग दौड़ और जो जंक फूड पिज्जा बर्गर खाने की जो होड़ मची हुई है, इसके कारण से हमारे डाइजेशन का कहीं ना कहीं बैल बजा हुआ है दोस्तों। और विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस जो है ये हर साल 29 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता के बीच पाचन संबंधी बीमारियों और संपूर्ण पाचन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। और इस वर्ष यानी 2026 को इस दिवस को मनाने का जो विषय है वो है लंबे समय से चले आ रहे ये लोगों को पेट की लगातार रहने वाली समस्याओं को गंभीरता से लेने और सही समय पर चिकित्सा सलाह लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। वैसे पाचन स्वास्थ्य को बेहतर रखने के कुछ उपाय हैं दोस्तों, अगर हम इन्हें अपनाएं तो हम घर पर ही अपने उस स्वास्थ्य को जो है ठीक कर सकते हैं।

करवाए, हमेशा भोजन को हड़बड़ी में खत्म न करें, हमें भोजन खा सके कि वो आसानी से आगे जाकर पच सके। और योग और व्यायाम तो आपके साथ हमेशा रहना ही चाहिए। सक्रिय रहने और योगासनों का अभ्यास करने से पाचन तंत्र जो है ये हमारा मजबूत रहता है। और एक बार दोस्तों, नशे से बचें, शराब और धूम्रपान का अत्यधिक सेवन पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इस साल इस दिवस को मनाने के लिए आप अगर सोच रहे हैं तो इसका सबसे अच्छा उपाय आप खुद अपने आप की सावधानी रखें और लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।

कदम भारत के इतिहास में एक ऐसे महानायक को याद करने का जो हल

उत्तर प्रदेश के हापुड़ की माटी में जन्मे चौधरी साहब प्रत्येक राजनीति करोड़ों के होकर गुजरते हैं। उन्होंने हमेशा कहा, असली भारत गांव में बसा है और जब तक किसान समृद्ध नहीं होगा

से पहुंचने का उनका सफर सादगी ईमानदारी और कड़ी से जीने की मिसाल था। पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और फिर के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जो ऐतिहासिक फैसले लिए उसने भारतीय कृषि की रूपरेखा बदली। जमींदारी उन्मूलन कानून हो, किसानों को उनकी फसल पर सही दाम दिलाना हो या फिर मंडियों की स्थापना करनी हो, साहब ने हर कदम पर किसानों के अधिकार

याद नहीं कि कुछ भी खूब लिखा है। खेतों की मिट्टी में मिट्टी से जिसका नाता गहरा था, सादगी और सच्ची पर जिसका पहचान था, जिसने बदली किस्मत हलधर और किसानों की, वो चौधरी चरण सिंह भारत का एक चमकता सितारा था। साल 1987 में आज ही के दिन ये महान आत्मा हमसे दूर चली गई, लेकिन उनके विचार, उनकी नीतियाँ और देश के प्रति उनका योगदान हर बार भारतीय के दिल में जिंदा है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा उन्हें देश में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाना उनकी इसी अदम्य सेवा को एक सच्चा और ऐतिहासिक नमन है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें शत शत

सुन रहे थे पूरब और पश्चिम फिल्म का ये गीत जिसे गाया था महेंद्र कपूर ने। गीत रचना थे इंदुवर की और संगीत कल्याण जी अनुजी का था।

दावत से बॉम्बे आ गए। शुरुआत में उन्होंने मूक फिल्मों में बिना पैसों के अतिरिक्त कलाकार के रूप में काम किया, लेकिन जब साल 1982 भारत की पहली मूक फिल्म मारा बनी तो अपनी

कहानी अधूरी है। फिल्म मुगले आजम में जब वो भारी भरकम इतनी लोहे का कवच पहनती है

सरकार ने उन्हें पद्म भूषण और सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा। उनके बहुत इस महान कलाकार ने दिल्ली को वे अपने पीछे राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर जैसे बेटों की एक

ています。

तो कुछ लोग दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन अपनी बातों से ज्ञान को अपने सपनों से हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। यार दोस्तों, आज इंटरेस्ट में हम बात कर रहे हैं योगेश की पुण्यतिथि पर। हिंदी सिनेमा ने एक ऐसा हीरा खोया था जिसने अपनी सादगी से हर दिल को खोया। यहाँ बात कर रहे हैं बेमिसाल चीज का योगेश की।

जानती है और आपको बता भी रही हूँ, दिल बाग बाग हो जाता है उनकी लिखे गीतों को सुनकर, जो जिसकी भी आप हमारे बीच में, जब तक

0: किसलिए?
1: योगा तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किसे हो?
0: मुझसे?
1: तुमसे? अच्छा बताते?
0: आकाशवाणी है ना? मैंने सुना है उसका नेटवर्क इस घर में फैला है।
1: उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो फायदा है जिस शहर में जाओ विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: ये भी तो बता दो से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700142424।
1: ओ 8700142424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700142424। पर
2: आप सुन रहे हैं जमशेदपुर का अपने रास्ते पर कारण से जाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम में यादों की महत्व।

भरपूर श्यामा और साथियों की आवाजों में लक्ष्मीकांत यादवाल की तर्ज थी और आज यादों की महत्व में वो गीत जो जीवन पर या जिंदगी पर आधारित है और गीतकारों ने अपने अपने तरीके से अपने अपनी परिस्थितियों के हिसाब से जिंदगी के बारे में लिखा है।

सदर का सिकंदर हुसैन से आप किशोर कुमार को सुन रहे थे। अनजान ने इसे लिखा था बयान दिया मंजी की तर्ज थी। आज यादों की महफिल है, जीवन के अलग अलग रंगों को भावों को खूबसूरती से लिखे गीतों में जिन्होंने पिरोया है वो गीत आपको सुनवा रहे हैं।

और अनुराधा पौडवाल को आप सुन रहे हैं दूरिया फिल्म से। ये रूप का संगीत था और सुदर्शन साकिर ने लिखा। दो जून सभी चमेली के आंगन में सजे हुई खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, हजारों की नहीं बातों में होगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगे अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री

0: लेकिन पहली की वर्षगांठ पर हम चलाएंगे खुशियों के गीत।
1: बधाई हो
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे शिवानी जी के संग। शिवानी जी साझा करेंगी अपने दिल के बाद। तो जरूर सुनेगा दो दिन विशेष सखी सहेली दिन

0: से उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद केस सीधा उन्होंने पहना नहीं। एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे
1: सुमन अभूले कार्यक्रम उजाले

हम दोनों से भी बड़ी अच्छी तरह से मोहम्मद रफी की आवाज में शाही विभाग ने देखा था और जयदीप का संगीत था। इसके साथ ही यादों की महफिल कार्यक्रम यही समाप्त होता है।

बहुत बहुत स्वागत आप सबका आपके प्रोग्राम सीरी लाइफ सफर में। मैं हूँ अनुराधा और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी तरफ से एक टेक्स्ट या इबारत लिखी जाती है, पोस्ट की जाती है, उसमें से आपको शब्द सुनने होते हैं और साथ ही उन शब्दों से कौन कौन से गीत शामिल हो सकते हैं ये बताना होता है। आपके प्यार भरे संदेश और गानों की लिस्ट मुझ तक पहुंच चुकी है। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं आज इस प्रोग्राम की और साथ ही मैं देखते हैं कि आपके गीतों की लिस्ट कितनी मेल खाती है हमारी लिस्ट से। लेकिन जो गीत आप चाहते हैं वो लिख भी सकते हैं शब्दों से, चाहे वो लिस्ट में शामिल हो या ना हो। हो सकता है कि मैसेजेस देखते देखते उनको भी शामिल कर लिया जाए, लेकिन एक बार इबारत जरूर फिर से पढ़ लेते हैं। हमारे उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी भी ट्यून इन किया है, उनसे लिए इस इबारत को फिर से पढ़ दें और फिर शुरुआत करेंगे आज के प्रोग्राम की। इबारत कुछ इस प्रकार है, तुम्हारी दिलों की छाव में ये दिन क्या रात की ठहर जाए, निगाहों का चादर मेरे दिल में उतर जाए, सजरे की महक जब हवाओं में खो जाए, मेरा प्यार तुम्हारे इशारे पे हर हद से गुजर जाए, सूर्या की चमक जैसे चांदी का सफर, पानी की चमक लगे कोई नीच है सर, जब तुम्हारी निगाहें मुझे चुपके से पुकारे, दिल की हर धड़कन बस तेरा ही नाम गुनगुनाए, तुम्हारे ख्यालों का मौसम अब रुकता ही नहीं, ये दिल तुम्हारे बिना कभी लगता नहीं, वादा किया था तुम्हारे साथ चलने का कभी, पर जब भी छिप जाते जब होती तुम पास कभी, तुम्हारे इशारों ने ऐसा जादू मुझ पर कर दिया, तुम्हारे इशारों ने ऐसा जादू मुझ पर कर दिया, इस प्यार ने मुझे शाउर कर दिया। चलिए शुरुआत करते हैं गीत के साथ और उसके बाद लेते हैं आपके संदेश।

संचार निगम की आवाजों में आप सुन रहे थे प्रकाश बिहारी ने इसे लिखा ओपी नैयर का संगीत था। ये खूबसूरत गीत के डिटेल्स आपको दे चुके हैं और आपके मैसेजेस भी बता रहे हैं कि आपने इस गीत के सभी डिटेल्स कौन से सुनते हैं, किसने गाया है, सब कुछ मुझे बताया है। और एक हमारे श्रोता है जिन्होंने ये भी बताया कि हारमोनियम

काफी सारे लोग संपर्क में

चाहती हूँ। हमारे बारिश में मौसम का मिजाज कुछ

देखकर फिल्म से आप क्यों देखे लता मंगेशकर थे और जाने का रखकर में इस गीत को लिखा था जो देखकर सही था और इस गीत के लिए बहुत ही संदेश उसका बहुत है। ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी में ये ठंडी छाँव की तरह आया है ये गीत, है ना। मैं भी इससे प्रसाद रखती हूँ फिल्म की। साथ ही साथ हमारी साथी लिखती है कि ये मेरा पहला संदेश है मगर सुनती हमेशा ही हूँ, देर से आने के लिए माफी चाहेंगे। नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल देर से नहीं आए, आप इस प्रोग्राम में हैं और बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही साथ जब हम बात करें थे बाजारों की तो दिल्ली का लाल किला मीना बाजार घूमा है इन्होंने एक साथ ही लिखते हैं और बार बार यही नाम फिर से आ रहा है, लाल किला मीना बाजार दिल्ली का पहाड़गंज पाली का बाजार घूमे हैं और बड़े मॉल में ही मीना बाजार नाम की दुकान दिखी जाती है।

तो मजा आ जाएगा। और वहां पर आप क्या क्या शॉपिंग करना पसंद करते हैं, या फिर आपको ये भी आरामदायक लगता है कि चलो ऑनलाइन हम लोग करवा लेते हैं ऑर्डर और सामान घर पर आ जाएगा। मॉल में घूमने का मजा कुछ और है और सुपर मार्केट में एक ही जगह से हर तरह की चीजें खरीदने का भी मजा कुछ और है। तो आपकी राय इसमें क्या है, मैं भी जानना चाहती हूँ। ये जो गीत अभी आप सुन रहे थे प्रेम पर्वत से विभिन्न और उनकी निगाहों के चाय, ये सिंपल फिल्माया गया है। आप इसका जवाब नहीं देते, मुझे इंतजार रहेगा। चलिए बढ़ते हमारे अगले गीत की तरफ और आपके इन दो जवाबों का इंतजार, यानी कि प्रेम पर्वत किस पर फिल्माया गया है और साथ ही साथ बाजारों के नाम और वहां पर क्या शॉपिंग कर सकते हैं,

दक्षिण रेलवे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में साहिल लुधियानी ने लिखा था और आरडी बर्मन की तर्ज। और बाजारों की बात हुई थी और सब सारे संदेश मुझ तक पहुंच गए हैं। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे शहर जयपुर का जौहरी बाजार खरीदारी शौकीनों के लिए स्वर्ग समान है, खरीदारी के शौकीनों के लिए भी। हाँ, और यहाँ आभूषण और कपड़ों की दुकानों से भरे पड़े हैं, आभूषण और कपड़ों की दुकान भरी पड़ी है। यहाँ साड़ियों, लहंगों और पारंपरिक जूते चप्पल का अद्भुत संग्रह मौजूद है और साथ ही रेस्टोरेंट भी है वहाँ पर LMD। जी हाँ, बिल्कुल घुमा हुआ मैंने जौहरी बाजार में। और एक और हमारे साथी लिखते हैं कि साप्ताहिक बाजार लगते हैं वहाँ जहाँ वो रहते हैं, जहाँ घूमने का आनंद ही कुछ और है। साथ ही हमारे एक साथी जो ओडिशा से लिखते हैं कि वहाँ भी मेला लगता है, बाली यात्रा कहा जाता है उसे, और ये मेला महानदी के किनारे लगभग 4 किलोमीटर लंबे इलाके में लगता है और लाखों दुकानें इसमें लगती है, करोड़ों की भीड़ जुड़ती है। और बहुत सी बात उन्होंने लिखी है कि बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत अच्छी बात है। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि हमारा ये बड़ा घर ही तो है ये झांसी, और सभी श्रोता आपस में सखा मित्र भाई बहन है। फेसबुक पर हमारा पोस्ट कार्ड समझ लीजिए, जिसके माध्यम से हम सुख दुख की चर्चा आपस में हाल चाल पता कर लेते हैं। हमारे साथी ने मीना बाजार दिल्ली के बारे में चर्चा की है और काफी कुछ लिखा है कि यहाँ पर पारंपरिक कपड़े, हस्तशिल्प और काफी लजीज स्ट्रीट फूड के लिए जाना जाता है और ऐतिहासिक खट्टा बाजार भी लगता है यहाँ पर लाल किले के अंदर। जी हाँ, और वहाँ पहुँचने के लिए भी कैसे पहुँचा जाए, बहुत खूबसूरती से उन्होंने पूरा

सूरज से हमारे साथी लिखते हैं कि चौरा बाजार है वहाँ पर, जहाँ पर ना घूमे तो बेचैनी सी लगती है, तो वो काफी घुमक्कड़ है और घूम के आते हैं। हमारे साथी लिखते हैं कि शिमला का मालरोड घूमे हैं और वहाँ के दुपट्टे खरीदे हैं और वहाँ पर लकड़ी के भी काफी सामान मिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत लकड़ी के पर्स मिलते हैं। जी हाँ, मैं काफी पहले घूमी तो काफी कुछ लिया, वहाँ से सीखने वगैरह तो है, लेकिन साथ में पर्स भी मिलते हैं लकड़ी के।

बहुत ही खूबसूरत लकड़ी के पर्स मिलते हैं जी। हाँ मैं काफी पहले घूमी तो काफी कुछ लिया वहाँ से, टीफिन वगैरह तो है लेकिन साथ में पर्स भी मिलते हैं लकड़ी के और बहुत ही दूसरी चीजें मिलती है माल रोड शिमला में। लखनऊ में अमीनाबाद का गड़बड़ खाना यहाँ भी घूमा हूँ, शॉपिंग भी की है, रेवड़ी और गच्छक भी खाई है। अरे वाह, सर्दियों में इसका मजा ही कुछ और होता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हैदराबाद का नाइट बाजार जो कि रात भर खुला रहता है और वहाँ पर हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की दुकानें रहती है। एक बार जाने का मौका मिला था और इसके अलावा दिल्ली के पास पंचकूला में ही हाट बाजार लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके मैसेजेस मुझ तक पहुँचाते रहिए और हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

अपने लोकल मार्केट या मॉल से ही शॉपिंग करती हूँ। शॉप पर जाकर चीज़ों को हाथों से चुनना, परखना और चीज़ों को खरीदने का एहसास कुछ अलग होता है, संतुष्टि भी मिलती है उससे। और ऑनलाइन मंगाते हैं तो बहुत सारी क्वालिटी की चीज़ें भी आ जाती हैं जिसकी आपकी भी ज़रूरत नहीं होती है, और नई चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर लेते हैं वहाँ जाकर ज़रूरत पड़ने पर। जैसे गूगल हमारी साथ में बहुत ही सटीक का जवाब दिया है, साथ ही एक और बाजार

था। गुजरात का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है और यहाँ के बाजार और मेले इसके तहत की जीवंत परंपराओं और समृद्ध इतिहास को दर्शाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर हम भी प्राप्त

जरूर आप पढ़ें और जरूर यहाँ पर घूमेगा। साथ ही साथ एक और काफी लिखते हैं कि प्रसिद्ध बाजार अजमेर के डिग्गी बाजार, नाला बाजार, बड़का बाजार, नया बाजार और भीलवाड़ा के भी प्रसिद्ध बाजार है सालानी बाजार, पवन बाजार, आजाद बाजार। जी हाँ बिल्कुल, मैं वापस

प्रमुख बाजार है जहाँ विभिन्न प्रकार के सामान मिलते हैं। यहाँ जड़ी बूटियाँ और आयुर्वेदिक दवाओं के साथ साथ मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा और जूट उत्पादों जैसे स्थानीय रूप से बने सामान मिलते हैं। और यहाँ पर

与神的在经历上。आपके संदेशों पर पहुंचने में और साथ ही साथ ये भी जानना चाहती हूँ कि कौन कौन से शब्द और कितने गीत आपकी लिस्ट के हमारे साथ मैच किए, ये भी तो हमें बताइए। बाजारों की बातें तो चलती है, चलती रहेगी। चलिए बाजारों की बात चलिए तो कुछ शेष बारे में बताया जाए कि एक हमारे श्रोता लिखते हैं, हमारे शहर इंदौर में सराफा बाजार बहुत प्रसिद्ध है। ये राजबाड़ा के नजदीक है, जिसमें ज्वेलरी, फैशन के सामान के साथ कचौड़ी, समोसे, मिठाई सभी कुछ मिलता है। बहुत ही स्वादिष्ट और खरीदारी का मजा तो बाजार ही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ऐसा बाजार लगता है जहाँ मुर्गों की लड़ाई

शहरों की बात की क्या? हमारे एक और साथी लिखते हैं कि अमृतसर में गुरुद्वारे में दर्शन किए उन्होंने गोल्डन टेम्पल में और उसके आसपास काफी घूमे हैं। वहाँ पर अमृतसरी नान और लस्सी भी पी है, वहाँ का पापड़ बढ़िया भी, क्या बात है, स्वाद आ जाता है। बिल्कुल अमृतसरी नान वहाँ का बहुत ही स्वादिष्ट है। राजस्थान के उदयपुर जिले में बड़ा बाजार है, जहाँ हर किस्म अच्छी डिजाइन की मोटरियाँ, सांगानेरी प्रिंट के कपड़े, लकड़ी से निर्मित वस्तुएं भी मिलती है। हमारे एक और साथी हमें लिखते हैं कि हमारे शहर कटक में चांदी की महीन कारीगरी की जाती है, और कहीं इसे कहीं कहता है, और लोग दूर से चांदी के कोणार्क चक्र आदि महीन वस्तुएं खरीदते हैं, दूर से आते हैं और ये वस्तुएं यहाँ से खरीदते जाते हैं। साथ ही हमारे एक और साथी ने लिखा है कि कुछ समय पहले वे नैनीताल गए थे और वहाँ की मशहूर मार्केट माल रोड, बड़ा बाजार, भोपिया मार्केट से गर्म स्वेटर, बैग, बैंगल्स और शो पीस खरीदे थे। बहुत भीड़ वाला मार्केट था वो। इटारसी में भी एक मार्केट है, बाजार है, जिसे पटवा बाजार कहा जाता है, शायद अगर मैं सही से इसे बता पा रही हूँ तो। और यहाँ पर शादी के काफी सारे सामान मिलते हैं, शादी की शॉपिंग की जाती है और श्रृंगार का भी काफी कुछ सामान मिलता है। ऐसे ही भोपाल में गौहर महल है, जहाँ पर लगभग पूरे साल हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित क्राफ्टमैन को प्रोत्साहन देने के लिए मेला लगाया जाता है, और ये जगह तालाब के पास होने से बहुत ही सुंदर है। ऐसे ही पीपली गांव जो कि पूरी जिले में है, वहाँ पर भी काफी प्रसिद्ध रंगीन छतरियाँ, गृह सज्जा का सामान और कैनोपी से बने जो चीजें हैं वो मिलती है। कैनोपी खरीद कर लेकर जाते हैं लोग बाग, लैंप कवर आदि। जी हाँ, बाजारों की बात की जाए तो भिंडी बाजार बॉम्बे, इसका भी जिक्र है हमारे श्रोता लिखे कि बहुत पहले यहाँ पर आए थे और घूमे थे, लेकिन इसका नाम क्यों पड़ा है वो कुछ समझ नहीं आया। काफी सारे एंटीक यहाँ पर मिलते हैं और काफी लंबा मैसेज है, तो मैं बहुत लंबा ये पूरा मैसेज नहीं पढ़ूंगी, लेकिन हाँ भिंडी बाजार को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि हैदराबाद का बेगम बाजार बहुत मशहूर है, यहाँ छोटी से छोटी चीजें यानी कि सुई से लेकर बड़े से बड़ा सामान भी

के मदद रहती है। आशा करते हैं कि आवाज है और आप सबने इसे पाने की डिटेल से लिख दी है मुझे। बाजारों की बातें तो हो ही रही है, तो ऐसे में एक हमारे साथी लिखते हैं कि

रहा है। लेकिन देखिए ना, एक से बढ़कर एक गीत आ रहे हैं और साथ ही साथ इतनी सारी बातें हो रही है, ये क्या काम है? आप हमारे साथ बने हैं, हम आपके साथ बने हैं। विक्टोरिया मार्केट की बात भी हुई है यहाँ पर, जिसमें पहले चाप की दुकानें थी लेकिन अब किताबों का मार्केट है। हमारे पास साथी कहते हैं कि गानों की कोई लिस्ट उन्होंने जारी नहीं की है, बस वो हमारे साथ है, हमारा साथ दे रहे हैं और जो भी गीत बज रहे हैं वो बस बड़े अच्छे मन से सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही कश्मीर की कली का शानदार गीत इसकी प्रशंसा की है और ये भी लिखा है कि शम्मी कपूर का अनोखा अंदाज देखने को मिलता है इस खासकर इस गीत में, जो कि बहुत अच्छी बात है। और गीत तो हम इसके बढ़कर लेकर आए हैं आपके लिए और अब इसी तरह

दीपक राजकुंदर के मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में फतेह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था और साथ ही आपके बहुत खूबसूरत प्यारे मैसेजेस मुझ तक पहुंचे हैं बस हर छोटे के अंतराल का।

आपके प्यारे प्यारे संदेश असर कर रहे पर हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज पूरे 1000 कमेंट तक पहुंचने वाले थे लेकिन थोड़े से रह गए, लेकिन किसी दिन इतने सारे कमेंट के साथ जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। गोरखपुर में गोलघर भी है, नौका विहार भी है, भारत का सबसे लंबा स्टेशन रामगढ़ ताल भी घूमकर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं, आशीष बिहारी के लिखे बोल बहुत ही सीधे और दिल में उतरने वाले होते हैं, और ये जो गीत अभी उन्होंने सुना ये बहुत ही अच्छा लगा। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने प्यारे और मीठे संदेशों के लिए। और मैं अनुराधा इजाजत चाहती हूँ आज इस प्रोग्राम से जिसका नाम है सुरीला सफर। आप बने रहे विविध भारती के चैनल। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जयघोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबले, हिंदी अनुवाद जयंत पाठकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

स्वास्थ्य बनारस में हुआ। नरम पंथियों के नेता नामदार और प्रखर देशभक्त गोपाल कृष्ण गोखले इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगस्त महीने से बंग भंग विरोधी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन भड़का हुआ था। उसी समय प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए। कुछ रियासतों के साथ ब्रिटिश समर्थक प्रतिष्ठित लोगों ने खुशी जताते हुए उनका स्वागत किया। इतना ही नहीं, इस वाराणसी अधिवेशन में उनके भारत आगमन पर आनंद व्यक्त करते हुए इस आशय का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे रविन्द्र नाथ को कांग्रेस की यह राज

पुत्रों ने उन्हें घेर लिया, पर कोई भी वहां प्रवेश न पा सका। इस घेरे पर कोतवाल पुत्रों का पहरा लग गया, इसलिए उन्हें सिरोपा प्राप्त हुआ। इसके बाद ढेर सारे पटाखे टूटे और राजपुत्र जहाँ

चुके थे। इस आंदोलन में बंगाली जनता के पीछे देश की संपूर्ण भारतीय जनता खड़ी है, इसका एहसास इस अधिवेशन से हुआ। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर बंगाल के विभाजन को रद्द करने का

से यह अधिवेशन स्मरणीय रहा। रविन्द्रनाथ की बड़ी बहन स्वर्ण कुमारी की बेटी सरला देवी चौधरी और उनके पति रामभुज दत्त इस अधिवेशन में उपस्थित थे। सरला देवी का हाल ही में विवाह हुआ था। भगिनी निवेदिता और उनकी सहकर्मी अबला बसु भी अधिवेशन में उपस्थित थी। अधिवेशन शुरू हुआ और दर्शकों में से आग्रह होने लगा कि सरला देवी चौधरानी वंदे मातरम गीत गाए। सरला देवी चौधरानी एक उत्तम कवियत्री और गायिका भी थी। श्रोताओं के इस आग्रह से अध्यक्ष रामलाल गोखले चिंतित हो गए। बंग भंग विरोधी आंदोलन की पृष्ठभूमि के कारण वंदे मातरम शब्दों के उच्चारण पर भी जिलाधीश ने प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसे समय में मंच से ही वंदे मातरम का गायन होना नरमपंथी गोखले जी को खतरनाक लगने लगा। अंततः श्रोताओं के आग्रह के कारण उन्होंने सरला देवी से कहा कि वंदे मातरम की शुरुआती कुछ पंक्तियां ही गाएं। परंतु सरला देवी ने अपने मधुर स्वर में वंदे मातरम गाना शुरू किया और पूरा गाकर ही

लोगों की जगह शिक्षक कोच कंठ शब्द बदल दिए। वंदे मातरम के शब्दों में किया गया यह पहला बदलाव था। इस अधिवेशन में एक और ऐतिहासिक घटना घटी, वो ये कि भारत के पहले राष्ट्रध्वज का प्रदर्शन इसी अधिवेशन में पहली बार हुआ। 1857 का स्वतंत्रता

से विदेशी और मन से पूरी तरह भारतीय बन चुके मार्गरेट नोबल

में इंद्र के वज्र का पीले रंग का चित्र था। इस फिल्म के एक ओर वंदे और दूसरी ओर मातरम ये बांग्ला लिपि के शब्द थे। ध्वज के किनारों पर 108 पीली ज्योतियां थी। यह ध्वज उस प्रदर्शनी में केवल प्रदर्शित हुआ, उसे कहीं भी सहराया नहीं गया, इसलिए इसे पहले ध्वज का दर्जा नहीं मिल सकता। फिर भी तैयार किया गया यह आद्य राष्ट्र ध्वज ही माना जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन रहे वंदे मातरम शब्दों का इस पहले ध्वज पर उपयोग किया जाना सबसे महत्वपूर्ण बात है। वंदे मातरम शब्दों का महत्व और सामर्थ्य जैसे जैसे सामान्य जनता के ध्यान में आने लगा, वैसे वैसे अंग्रेज सरकार को इसका उपद्रव महसूस होने लगा। सरकार ने वंदे मातरम गाने या शब्द उच्चारने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध के कारण वंदे मातरम का प्रभाव और बढ़ने लगा। बंग भंग विरोधी आंदोलन को वंदे मातरम, स्वदेशी का समर्थन, विदेशी माल का

विरोध था उस सभा में उसकी हुई तीव्र निंदा और स्वदेशी का आग्रह ये बातें पूरे देश में फैल गईं।

शब्दों में टीका की थी। स्वतंत्रता वीर विनायक दामोदर सावरकर उस समय पुणे में फर्गुसन महाविद्यालय में पढ़ रहे थे। 1 अक्टूबर को एक सभा बुलाकर युवा सावरकर ने पुणे के लोगों से विजय

शिवराम महादेव कांत के और नरसिंह केलकर उपस्थित थे। इस सभा के बाद बाहर गांव से लौटे लोकमान्य तिलक तक ये बात पहुंची तो उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली और बड़े पैमाने पर करने का सुझाव दिया। 7 अक्टूबर 1905 के दिन लकड़ी पुल के पास मुठा नदी के किनारे पूरे पुणे में घूमकर इकट्ठा किए गए और जुलूस के साथ बड़ी गाड़ी पर लाद कर वहाँ लाए गए विदेशी वस्त्रों की होली की गई। इस होली की आग ब्रिटिशों के लंदन स्थित राज सिंहासन तक पहुंचे बिना नहीं रहेगी, ऐसा भाषण उस समय लोकमान्य तिलक ने दिया। वंदे मातरम की घोषणाओं के बीच जल की लपटों ने पूरा वातावरण उज्ज्वल कर दिया। पुणे में हुई विदेशी वस्त्रों की उस विशाल होली के बाद पूरे देश भर में ऐसी होलियां जलने लगी।

नए आए लॉर्ड मिंटो ने कर्जन की ही नीति आगे चलाई। कर्जन और कुल्लर के जैसे वाकबान न छोड़ते हुए इस आंदोलन के नेताओं को कभी मीठी मीठी बातों से खुशलाकर तो कभी धमकी देकर कार्रवाई का डर दिखाकर इस आंदोलन की हवा निकालने का वे प्रयास कर रहे थे, परंतु आंदोलनकारियों का निश्चय और पक्का होता गया, जिससे लॉर्ड मिंटो भी दमन की नीति और कड़ाई से लागू करने लगे। इसी आंदोलन के कारण पूरे विश्व को ब्रिटिश राजसत्ता के उन्मत्त अमानवीय और हिंसक व्यवहार का दर्शन हुआ। उसके लिए निमित्त बने वे वंदे मातरम शब्द और बारिशाल हुआ राष्ट्रीय सभा के युवाओं का

बात सुन रहे थे लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में खस्ता के ढोते रहने से लिखा वसंत देसाई का संगीत था। दो जुलाई सखी सहेली के आंगन में सजे हुए खुशियों की रंगोली

0: पूरी नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सती सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: हिमानी से जुड़ी होंगी हमारी विशेष छुट्टी 2 जून सती सहेली की वर्षगांठ पर हम चलाएंगे गीतियों के बीच जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग। हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात। तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सती सहेली दिन में 3 बजे।
2: विभाग से प्रोग्राम सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगर।

जी जी धन्यवाद। आपके मन में प्रोग्राम

0: इस गांव वाले पहना में एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आ गई।
1: सुमन भूले कार्यक्रम उद्यालय

लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं,

के लिए शामिल रहा। हमारा उम्मीद ये होगा लोकल कैंडिडेट होना चाहिए। हम स्पष्ट रूप से कहा झारखंड के मामला में तो झारखंड जो सेंटिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है,

0: करने वालों को आपकी सचिव शंकर वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सचियों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है जिसे हम एक बार गवा दें तो फिर वापस कभी नहीं पा सकते? सचियों, वो अनमोल पूंजी है समय। दुनिया भर की दौलत बताकर भी हम खुदरा वक्त नहीं खरीद सकते। बीता हुआ एक भी पल कभी वापस नहीं आता। सचियों, हम भी आपके समय की कीमत को समझते हैं। आप सब लगातार प्रयास करती हैं हमारे साथ फोन पर जुड़ने के लिए। आप अपना सारा काम छोड़कर लगातार अपना समय हमें देती हैं और देखिए ना, स्टूडियो के फोन की घंटी लगातार बज रही है। तो देखिए पहला कॉल कहाँ से आया है और किस सखी ने हमें ये कॉल किया है। हेलो सुनीली।
1: हेलो सुनीली जी, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना, कौन बोल रही है और कहाँ से बात कर रही है?
1: मैं संगीता फुलमाली बात कर रही हूँ, इंदौर से, न्यू चित्रा नगर वेलोसिटी के पीछे से।
0: संगीता जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: जी मेरा बुटीक है, मैं ब्लाउज वगैरह बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड की कटिंग मास्टर है, तो रेडीमेड फ्रॉक हम की कटिंग करते हैं फैंसी।
0: तो आप दोनों का काम अलग अलग रहता है या एक साथ मिलकर काम करते हैं आप?
1: जी वो मतलब मार्केट भी जाते हैं तो वहीं से दुकान पे मतलब कटिंग वगैरह करते हैं, कारीगर उन बनाते हैं माल।
0: अच्छा,
1: और मैं घर पे ब्लाउज वगैरह बनाती हूँ।
0: तो आप ऑर्डर किस तरह लेती हैं, किस तरह से आपको ऑर्डर मिलते हैं, इस बारे में कुछ बताएंगे हमें?
1: जी मेरा तो गिराकी काम है मैम, मैं मतलब ब्लाउज वगैरह लेडीज को नहीं आती है बनवाने के लिए। हाँ, और सूट सलवार राजस्थानी पोशाक सब बना

0: फिर हम 6-7 सालों से कर रही हूँ।
1: अच्छा, इसके अलावा जिस तरह से आजकल बैग बनाने का काम भी बहुत चल रहा है, ऐसे काम भी करती हैं सिर्फ जो महिलाओं की पोशाकें हैं वही बनाती हैं?
0: सिर्फ पोशाक कौन है ना, वही बनाती हूँ, ब्लाउज सब।
1: अच्छा, आपके अलावा घर में और कौन कौन है आपके?
0: मेरे पति है और मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है 10 साल का पूरा कम्प्लीट।
1: अच्छा, और काम करते करते आप रेडियो भी सुनती रहती हैं?
0: जी, मैं रेडियो तो मैं कई सालों से सुन रही हूँ, कम से कम 10-15 साल से ज्यादा ही हो गए, और मेरा पहली बार कॉल लगा है इसमें।
1: आपको बहुत बहुत बधाई, आपका कॉल लग गया। अब ये बताइए कि आप गीत कौन सा सुनना चाहती हैं?

0: में गुड्डू फुलमाली और राजवाड़े से मतलब मास्टर है कटिंग करते हैं।
1: तो आपको सुनवाते हैं थानेदार फिल्म का आपकी पसंद का ये गीत।

0: आप कौन बात कर रही हैं?
1: हम प्रेरणा प्रलखन नरे नांदेड़ से बात कर रहे हैं।
0: नांदेड़ से प्रेरणा बात कर रही हैं?
1: हाँ हाँ।
0: प्रेरणा जी कैसी हैं आप?
1: हाँ बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्रेरणा जी मुझे बताइए आप क्या कर रही हैं?
1: मैं घर पे हूँ, मेरी बीए तक पढ़ाई हुई है
0: जी।
1: और मुझे अभी अंधत्व आया है, मैं 64 के अब अंधी हो गई हूँ। उसके बाद मैंने एक्यूप्रेशर एंड मसाज का कोर्स किया, अभी मैं हजारों पेशेंट अच्छे करती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात
1: है। घर का सारा काम भी करती हूँ।
0: क्योंकि इससे ऐसी कोई बात नहीं हो सकती कि कई बार हमारे अंदर ऐसी कोई कमी आ जाती है चाहे अनचाहे, लेकिन उससे उबर कर हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। तो आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, खुद को भी संभाल रही हैं, अपने परिवार को संभाल रही हैं और कितने अन्य लोग हैं जिन्हें आप अपनी सेवा दे रही हैं।
1: हाँ बहुत सारे लोग हैं, उनकी बहुत सेवा मैंने बहुत अच्छी तरह से ठीक किया उनको।
0: तो किस तरह का काम होता है आपका बताएंगे?
1: कौन से भी पेशेंट आए मैं मेरी कोई देखती हूँ, स्पर्श किया तो किस नाड़ी में क्या प्रॉब्लम है ये मुझे समझ नहीं आता। स्पर्श करने के बाद ही
0: सिर्फ नाड़ी देखकर तो आप सिर्फ नाड़ी देखकर आप रोग का पता लगा लेती हैं?
1: हाँ हाँ, नाड़ी देखकर सिर्फ मैं स्पर्श कर सकती हूँ। उसके बाद का कोई मुंह टेढ़ा होना, अर्धांग वायु, पेट का दर्द, घुटनों का दर्द, पीठ का दर्द, ऐसे सब मैंने ठीक किए हैं।
0: और जो रोगी होते हैं ठीक होने में कितना समय लग जाता है?
1: ज्यादा दिन से रोगी है तो ज्यादा दिन लगेंगे, कम है तो कम लगेंगे। एक लड़का मेरे पास आया था, 6 साल का बच्चा था, वो जन्म से ही कभी चलता ही नहीं था, लेकिन मैंने उसको 1.5 महीने में अपने पैरों पे खड़ा किया और 3 महीनों में वो काफी के सहारे चलना सिखाया।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। उन माता पिता को कितना अच्छा लगा होगा आपके उपचार के बाद में, जो बच्चा चल नहीं सकता था उसे आपने अपने पैरों पर खड़ा कर दिया।
1: बहुत उनको अच्छा लगा, उन दोनों ने बहुत दुआई दी।
0: उपचार के लिए आप कोई दवाइयाँ देती हैं या
1: नहीं? दवाइयाँ नहीं, मैं सिर्फ अपने स्पर्श से नाड़ी देखती हूँ और उससे एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाती हूँ और मसाज करती हूँ।
0: रेडियो की कब सुनती हैं फिर? क्योंकि मरीजों को देखने के बाद में आपको क्या समय मिलता है रेडियो सुनने के लिए?
1: वो चालू से रहता है रेडियो, क्योंकि मैं घर पे ही मरीज को देखती हूँ, दिखाई नहीं देता इसलिए मैं कभी नहीं जाती बाहर।
0: अच्छा।
1: घर का खाना बनाना, बच्ची को स्कूल भेजना, पेशेंट देखना, काम करते करते ये सुनती भी हूँ और काम भी करती हूँ।
0: आपकी बच्ची कितनी बड़ी है?
1: मेरी बच्ची अभी 8 साल की है।
0: तो फिर तो बड़ी मुश्किल होती होगी आपको उसे भी संभालने के लिए।

0: फिर मैं अपने हिम्मत से खड़ी हुई और मैंने 2 साल की बच्ची और
1: प्रेरणा जी, आपका जो नाम है, आप ये सार्थक कर रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर, आपकी कहानी सुनकर। अब ये बताइए कि आप कौन सा गीत याद करना चाहते हैं?
0: मेरे बच्चे को बहुत अच्छा लगता है यादों की बारात का, चुरा लिया है मैंने।
1: आपको सुनवाते हैं यादों की बारात फिल्म का ये।

0: से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सचों के फोन कॉल का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सहेली जी, बताइए कौन बोल रही हैं और कहाँ से आप बात कर रही हैं?
1: मैं उत्तराखंड से पुष्पा डोगराल बोल रही। मैम
0: पुष्पा डोगराल
1: जी
0: उत्तराखंड से बात कर रही हैं?
1: जी मैम।
0: उत्तराखंड से कौन से शहर से बात कर रही हैं?
1: देहरादून शहर से बोल रही हूँ।
0: अरे बहुत खूबसूरत शहर है आपका।
1: जी मैम थैंक यू। और मैम तो आपके प्रोग्राम सारे सुनते हैं मैम।
0: मैडम हमें देहरादून के बारे में कुछ बताइए। बहुत खूबसूरत शहर है और ये ऐसा शहर है इस समय पर खास तौर पर वहाँ शहर शहर रहती होगी क्योंकि जब गर्मी हो लोगों को
1: आजकल तो बहुत ट्रैफिक इतना है मैम कि बहुत मतलब यात्री कई कई टूरिस्ट आते रहते हैं। मसूरी है यहाँ से और ऋषिकेश राम झूला लक्ष्मण झूला और हरिद्वार यहाँ से सारे आते रहते हैं। यहाँ पे
0: आपने जितनी भी जगहों के भी नाम लिए ना ये सब वो जगह है मध्य भारत में उत्तर भारत में गर्मी बहुत तेज हो जाती है ना तो उस गर्मी से राहत के लिए इसी जगह पर यही जाना लोग पसंद करते हैं। और वहाँ का जो वातावरण है
1: मसूरी मसूरी हो गया केदारनाथ हो गया बद्रीनाथ हो गया हेमकुंड साहिब हो गया और हरिद्वार ऋषिकेश यहाँ पे तो टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ रखे हैं मैम। आजकल
0: आप बताइए आप क्या करते हैं?
1: मैं तो घर पे रहती मैम।
0: कुछ पति घर पर समय काटने के लिए आपका सबसे पसंदीदा काम कौन सा होता है?
1: मेरे को तो साफ सफाई अच्छी लगती है ज्यादा और रेडियो सुनना।
0: अच्छा रेडियो के कौन से प्रोग्राम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: सहेली हेलो फरमाइश।
0: आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: पतंग फिल्म का गाना सुना दीजिए।
0: तो आपको सुनाते हैं पतंग फिल्म का गाना जिसे गाया है लता मंगेशकर।

0: हाँ बताइए, आप कौन बोल रही हैं?
1: हम आरती वर्मा बोल रहे हैं कानपुर से।
0: कानपुर से आरती जी बात कर रही हैं। आरती जी,
1: हाँ
0: कानपुर में तो बहुत गर्मी होगी ना इस समय?
1: हाँ मैं गर्मी तो पड़ रही वहाँ।
0: और अभी गर्मियों की छुट्टी भी चल रही होंगी बच्चों की,
1: हाँ छुट्टी चल रही है।
0: तो बच्चों को बाहर जाने से रोकना पड़ता होगा ताकि वो धूप में जाकर परेशान ना हो जाए।
1: हाँ मैडम जी, घर ही में रखते, निकलने नहीं देते, बाहर बहुत धूप रहती है, इसी वजह से अंदर रखते हैं बच्चों को।
0: आंटी आप क्या करती हैं बताइए?
1: हम घर ही में रहते मैडम, घर ही के काम काज करते हैं।
0: अच्छा, आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आज?
1: हम नगीना का सुनेंगे, नहीं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा।
0: नगीना फिल्म का ये गीत आप

0: त्रिपुरा से मैं बुल्टी दास बोल रही हूँ।
1: बुल्टी दास त्रिपुरा से बात कर रही हूँ
0: जी।
1: क्या करती हैं आप?
0: मैं हाउस वाइफ
1: जी। मुझे बताइए कि आप मेरी भारती सुनती हैं?
0: जी जी मैम सुनती है। हेलो फैमिली, हेलो बोरमाई।
1: इसके अलावा आपके परिवार में और कौन कौन है?
0: एक बेटा दुई बेटी।
1: एक बेटा और दो बेटियां हैं आपकी?
0: हस्बैंड।
1: अच्छा मुझे बताइए त्रिपुरा जो शहर है उसका मौसम कैसा रहता है? यहाँ सर्दी गर्मी ज्यादा होती है या बारिश ज्यादा होती है?
0: बारिश बारिश बारिश होती है मैम, ज्यादा बारिश।
1: तो अभी तो बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, फिर वहाँ बहुत बारिश होंगी।
0: जी मैम बहुत बारिश चलते
1: हैं। तो आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: फिल्म का नाम अंधा कानून, गाने का बोले रोते रोते हंसना।
1: रोते रोते हंसना सीखो, ये अंधा कानून फिल्म का गाना है जो आज आप सुनना चाहती हैं
0: जी।
1: आपको सुनवाते हैं बुल्टी दास जी, आपकी पसंद का ये गीत।

0: से हाजिर हूँ और शुरू करते हैं सिलसिला सचों के फोन कॉल का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: सहेली का नाम बताइए, आप कौन बोल रही हैं और किस शहर से आपने कॉल किया है हमें?
1: मेरा नाम मोनिका साहू है, मैं बोरिया खुद रायपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ।
0: मोनिका साहू जी, अपने बारे में कुछ बताइए हमें कि आप क्या करती हैं?
1: मैं BSc फोर्थ सेम में हूँ अभी और मेरे अभी फोर्थ सेम के फाइनल एग्जाम चल रहे हैं।
0: अच्छा, आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही हैं और आपको रेडियो सुनने के लिए समय मिल जाता है पढ़ाई स्कूल कॉलेज वगैरह सबसे?
1: हाँ, कभी कभी नहीं मिल पाता तो फिर मैं मोबाइल में सुन लेती हूँ और जब मिलता है फोन तो मतलब या फिर नहीं मिलता घर में सुनती हूँ। हमारे घर में हम लोग सभी रेडियो में सुनते हैं विविध भारती।
0: और मोबाइल पर जब आप सुनती हैं तो न्यूज ऑन एयर ऐप पर सुनती हैं?
1: नहीं, मैं ज्यादातर तो यूट्यूब पे ही सुनती हूँ क्योंकि उसमें लाइव और सारे वीडियोस मिल जाते हैं मुझे मेरे सुनने वाले से, जैसे सखी सहेली, हेलो फरमाइश, ये सब मैं सुनती हूँ।
0: तो जो पुराने प्रोग्राम है उन्हें सुनती हैं या लाइव सुनती हैं यूट्यूब पर?
1: लाइव भी सुनती हूँ और पुराने प्रोग्राम भी सुनती हूँ मैं।
0: आप लाइव सुनना चाहती हैं तो न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए आप सभी प्रोग्राम सुन सकती हैं, विविध भारती के भी और प्रसार भारती के सभी कार्यक्रम आप सुन सकती हैं।
1: हाँ,
0: और आप बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है अभी?
1: अभी मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, अभी तो मेरे एग्जाम चल रहे हैं, अभी सिर्फ दो ही एग्जाम हुए हैं और बाकी के अभी बच्चे हैं।
0: अच्छा, और इसके बाद में आपके जो भविष्य की योजनाएं हैं वो क्या है? इसके बाद आप और आगे पढ़ना चाहती हैं या कोई नौकरी वगैरह करना चाहती हैं?
1: मैं वैसे तो टीचर बनना चाहती हूँ

0: नहीं मैं ट्यूशंस नहीं लेती हूँ, बस ऐसे ही कभी किसी को डाउट हो जाता है तो उन्हें क्लियर करती हूँ, और अपने लिए भी करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है किसी को किसी चीज के बारे में अच्छे से बताना और समझाना।
1: बहुत अच्छा काम होता है एक शिक्षक का, और आप लोगों को राह दिखाएंगे। और शिक्षक वो काम है जो बहुत सारे लोगों के लिए एक खुद जल कर रोशनी करता है। और आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: मुझे मासूम पिक्चर का लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा सॉन्ग सुनना है।
1: आपको अपनी पसंद का ये गीत।

0: चीजें चाहिए, आप कौन सी की बात कर रही हैं?
1: इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन।
0: इंदौर से जीनत परवीन बात कर रही हैं
1: जी।
0: जीनत जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: हाउस वाइफ हूँ।
0: तो घर पे करने के लिए काम बहुत सारे होते हैं, जब शायद बाहर महिलाएं जाती हैं ना, उससे कहीं ज्यादा काम एक घर में काम करने वाली महिला को होते हैं
1: जी।
0: और आपके घर में कौन कौन है जीनत जी?
1: जी, हस्बैंड है, मैं और बच्चे हैं, तीन लड़के हैं। सबसे छोटा वाला 13 साल का है और एक 15 साल के और एक 21 साल का।
0: तो अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तीनों?
1: जी, दो पढ़ाई कर रहे हैं और बड़े वाले उनके पापा के साथ जाते हैं ड्यूटी।
0: तो अपने पिताजी के गांव है उसमें वो हाथ बताते हैं
1: जी।
0: आपके पति क्या काम करते हैं?
1: वो आरओ का प्लांट से ये बनाते हैं, जो उसको फैक्ट्रियों में रखते हैं ना बड़े बड़े
0: जी।
1: तो बाहर का काम है सब, अमरीका और यहाँ जाते हैं तो बड़े प्लांट बनते हैं।
0: और आप बताइए, आप घर में समय काटने के लिए क्या क्या करते हैं?
1: अपना काम निपटा लेती हूँ 1 बजे तक।
0: हाँ,
1: और रेडियो सुनती रहती हूँ, सुबह से चालू रहता है रेडियो 7 बजे से।
0: हाँ,
1: तो रात के 11 बजे तक चलता है। और फिर अपने काम निपटा के 3 बजे रेस्ट कराती हूँ, तो अपने लिए समय निकालती हूँ थोड़ा।
0: जब आप अपने लिए समय निकालती हैं, जब आपका पसंदीदा काम क्या होता है?
1: नहीं, बस यही रेडियो सुनती रहती हूँ और उसमें कभी नींद आ जाती है थोड़ी घर ले जाती हूँ बस।
0: आप कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: शान पिक्चर का सुनूंगी, यम्मा यम्मा यम्मा यम्मा ये खूबसूरत।
0: सुनवाते हैं आपको शान फिल्म का ये वाला।

करते हुए थे, ये बताइए ग्रुप कौन से सुनना चाहते हैं? इन साल बाद पिक्चर का गाना है हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। अनुराधा जी और मोहम्मद अजीज की आवाज में होंगे और मिथुन वाली

0: से हमारे जीवन में आती है और आप जैसे जो इस शहर में रहने वाले लोग हैं इसका बहुत बड़ा सहयोग है। ये शहर इतना सुंदर है और साफ भी है।
1: जी
0: खुशी आप क्या कहती हैं?
1: मैम मैं स्टूडेंट और टेंथ क्लास हूँ।
0: दसवीं में जानते हैं जब नवीं की आपने परीक्षा दी है अभी।
1: हाँ
0: तो अब दसवीं के लिए तो बहुत अच्छी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ाई करनी।

0: क्या पढ़ना है उसकी बहुत मदद मिलती है। खुशी, आप क्या करना चाहती हैं आगे बढ़कर, क्या बनना चाहती हैं?
1: मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरी मम्मी का सपना था कि मैं मेरी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगी।
0: बहुत अच्छा सपना आपकी मम्मी ने देखा है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप जरूर एक दिन बहुत बड़ी कामयाब डॉक्टर बने।

0: के बारे में सोचे कि आज की प्यारी बिटिया उनकी है और खुशी को बहुत खुशी हो रही है कि आज उसको कॉल लग गया और खुशी से बात करके हमें भी खुशी हो रही है। तो अब बताइए खुशी की कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
1: मेरे मम्मी पापा से ही अलग गीत सुनना चाहूंगी, मुझे माफ करना ओम साईं राम।
0: सुनाते हैं आपको आपकी पसंद का ये।

0: दे रही हूँ इस समय।
1: जी मैं हर्षिता गुजराती बात कर रही हूँ।
0: हर्षिता जी कहाँ से कॉल लगाया है आपने?
1: मैं हरपन मौला कलाकार किशोर कुमार की नगरी खिलवा मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ।
0: क्या बात है, आपने जो अपने शहर का परिचय दिया है ये बड़ा अच्छा है।
1: जी मैं बहुत दिनों से हेलो सहेजी में फोन ट्राई कर रही थी, आज सफलता मिल ही गई।
0: आप किशोर कुमार की नगरी में रहती हैं, तो क्या आपने कभी किशोर कुमार का जो वहाँ पर निवास स्थान है वो देखी ही जाते?
1: जी मैं स्थान पर गई हूँ और जो किशोर कुमार की नगरी है वहाँ पे समाधि है, मैं वहाँ भी गई हूँ, वहाँ पे कार्यक्रम होते रहते हैं। मेरे पापा के साथ में जाती हूँ, मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है।

0: में फिर मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ा तो उसके बाद फिर मैं पापा से जुड़ गई इस चीज के लिए।
1: अच्छी सर, आप क्या कहते हैं?
0: मैंने एमकॉम की डिग्री प्राप्त करी है दिल्ली अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से
1: जी।
0: और अभी मैं संस्कार भारती के स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती
1: हूँ। अच्छा, आपने डिग्री लेने के बाद में अभी आपने पढ़ाने का काम भी शुरू कर दिया है?
0: जी जी,
1: बहुत अच्छी बात है। एक शिक्षक के कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसे आपने जा रहे हैं
0: जी।
1: और आपके पूछे थे क्या भविष्य की क्या योजनाएं हैं?
0: मेरी भविष्य की यही योजना है कि मैं संस्कार भारती से जो जुड़ी हुई विद्या भारती से वहाँ जितना मुझसे हो सके मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगी। वहाँ से मैं सीख भी रही हूँ और सिखा भी रही हूँ।
1: और आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हूँ? सीखा
0: मैं आज नाइट इन लंदन फिल्म से बाहोशो हवाज दीवाना
1: सब सवाल
0: जी जी जी
1: आपको सुनवाते हैं आपकी।

कॉल करने वाली सभी सखियों का धन्यवाद। आप सभी सखियों से अनुरोध है कि जिनके कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हो गए अगले दो महीने तक वो कॉल ना करें, ताकि हमारी अन्य सखियों को भी इस कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिल सके। हेलो सहेली कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपको करना होगा अगले मंगलवार तक का इंतजार। आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 02240024662, 02226702888। नंबर आपको फिर से बता देते हैं 02240024662। एक अन्य नंबर है जिससे आप कॉल कर सकते हैं 02226702888। आज के धनुषहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है मंजेश सांगली, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से, विविध भारती की ओर से

कलैया के पास खड़े बरगद के पेड़ के नीचे बुजुर्गों की बातें और सूरज की पहली किरण फसल पर पड़ते ही पूरा गांव मानो जाग उठता। प्रेम है एक दूसरे का, सत्कार है और साथ ही है अपनापन। मंदिर की घंटियां, रहक की आवाजें, गाय का रंभाना, बच्चों की चिलचिलाहट, पंडित पर पनिहारियों की हंसी खिचोली और संतोष के साथ गुजर बसर करते हो। इसी गांव के एक कोने में पुराना लेकिन बेहद स्नेह से भरा घर, राम नारायण का घर। राम नारायण और उनकी पत्नी कमला गांव में सबसे आदर का पात्र है। मेहनती, ईमानदार और रिश्तों को सबसे ऊपर रखने वाले। इनके दो बेटे विक्रम और अमित बचपन से ही एक दूसरे की छाया की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं। दोनों में इतना गहरा प्रेम है कि लोग उदाहरण देते हैं कि राम नारायण के दोनों बेटे सच में राम लक्ष्मण जैसे हैं। एक दूसरे के लिए तो सदा खड़े रहते हैं और दूसरों के लिए भी साथ में खड़े हो जाते हैं। राम नारायण जी ने उन्हें व्यवहारिक शिक्षा दी है तो माँ यानी कमला जी ने उन्हें सांसारिक और आध्यात्मिक। कुल मिलाकर दोनों बालक ऐसे हैं जैसी चाह सभी को होती है और सभी चाहते हैं

पर दोनों शहर में जाकर पढ़ने लगे और यहीं से आबो हवा बदलने लगी। शहर की चकाचौंध रात आने लगी और मासूमियत कहीं खोने की लगी। फिर दोनों के जीवन में नए सपने, नए विचार, आगे बढ़ने की आकांक्षा, अनंत तक चलने की दौड़ का हिस्सा बनने की चाह, और जो कि बिल्कुल गलत नहीं था। हर किसी को आगे बढ़ना और नई संभावनाएं खोजना भी चाहिए, परंतु दुर्भाग्य यह था इन्होंने कई बातें मासूमियत के कारण सीखी ही नहीं। तो बड़ा बनने की लालसा ने इनके अंदर थोड़ा थोड़ा लालच भी भर दिया। अब विक्रम का विवाह सीमा से हुआ

बाद एक अवगुण भी था जो आपसे करता था। उसे सब कुछ अपने हिसाब से और स्वयं के लिए चाहिए था। उसके हिसाब से तो दुनिया भी उसके लिए ही घूम रही थी, परंतु प्रेम के वशीभूत

सभी के साथ उनको पूरा करने की। दोनों के मन में लालच तो पहले से आ ही चुका था और विवाह के बाद घर की हवा बदलने लगी। धीरे धीरे ख्वाहिशें रिश्ते का काम करने लगे और जहाँ कल तक दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे, आज रिश्वेल फैलने लगी थी। लालच, अहंकार, स्वार्थ अपनी जड़ें जमाने लगे थे और इसका प्रभाव पूरे परिवार पर दिख रहा था।

पर कहती, इतनी बड़ी जमीन है लेकिन फायदा कुछ नहीं, बांट लेना चाहिए। हमारा अपना भी तो परिवार है, उसको देखना है, कब तक सबको ढोकर चलेंगे। और वही छोटी बहू अमित की पत्नी यानी राधा ये सोचकर दुखी होती है, जमीन तो रहती ही है पर इससे टूटे तो घर कैसे रहेगा, हमारा भविष्य अपनों के साथ है, संस्कार है, अपनापन है और यही तो जीवन की पूंजी है। और विक्रम अमित दोनों अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त थे कि उन्हें परवाह का पता ही नहीं चला, कहाँ क्या अंधकार पनप रहा है, जीवन की चकाचौंध चौड़ने वह देख ही नहीं पाए। और धीरे धीरे उनके दिलों में दूरियां और बढ़ने लगी। राम नारायण कमला जी प्रयास कर रहे थे, देख रहे थे कि किसी तरह से इसे संभाल लिया जाए, दोनों बेटों को समझा रहे थे, परंतु उनकी सुनता कौन था, शायद उनके पास सब कुछ संभालने के लिए समय भी बहुत कम बचा था।

जो लड़के एक रोटी में 7 खा लेते थे आज एक घर में रहने से डरते हैं। कल तक जिन पर पूरा गांव गर्व करता था वैसे ही बालक बनाने की प्रार्थना करता था, आज हम भी लोगों के किस्सों में शामिल हो गए और वह रोने लग जाती। वहीं रामनारायण जी के पास कोई उत्तर नहीं था, चुपचाप सुनते और दोनों माता पिता जागती आँख

मनुष्य बन चुका था और इसी लालच ने रूप ले लिया था बहस का, विवाद का। और एक सुबह जमीन बांटने की बात पर दोनों भाइयों में बहुत भयंकर झगड़ा हो गया। परिवार का छोटा बेटा ने चिल्लाया, भैया माँ बाप की सेवा की बात करो, तुम बस जमीन के हिस्से गिनते हो, माता पिता की आवश्यकताओं को तो देखना भी आवश्यक लगता नहीं तुम्हें, सब सब मैं अकेले कर रहा हूँ। बड़े बेटे विक्रम ने गुस्से में जवाब दिया, और तुम तो बस यही चाहते हो कि मैं कुछ भी ना बोलूं, सब तुम्हें मिल जाए, सेवा का दिखावा करके पूरा मेवा अकेले खाना चाहते हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा,

बढ़ता गया और यह तनाव इतना बड़ा कि रसोई में बना भोजन अमृत नहीं दिखता काम करने लगा और दूरियां बढ़ती जा रही और बूढ़े हो चुके माता पिता ने जब रोकने की कोशिश की अपनी असहायता भी दिखाई संस्कारों की दुहाई भी दी उनके बचपन का प्रेम भी याद दिलाया यूं कहें कि सारे हथियार भी अपना लिए पर दोनों भाइयों की आवाजें इतनी ऊंची हो चुकी थी कि प्यार की सारी बातें उसमें ही दबे और ऐसा लगने लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और आगे कोई रास्ता नहीं क्रोध में आकर एक दिन अमित घर छोड़कर गांव के दूसरे सिरे पर रहने चला गया ताकि वह विक्रम की पूरी संपत्ति को हथिया लेने वाली बात को गलत साबित कर सके और विक्रम अपने माता पिता से अलग हो गया क्योंकि पहले भी सेवा तो अमित ही कर रहा था और वह सेवा समाप्त हो गई उसी रात कमला ने रो

तुमने कहा उन्हें शांति चाहिए, लेकिन घर में शांति कहाँ थी? तनाव बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे कैसे? कभी कभी हम बच्चे अपने स्वार्थ में अपने माता पिता की उम्र का भी नहीं सोचते, उनके जीवन के अंत का कारण तक बन जाते हैं। और यहाँ यही हो रहा था। पिता के बीमार होने पर भी दोनों बेटों में बहस जारी रही, पैसों की, जमीन की, जिम्मेदारी की। और एक दिन सुबह राम नारायण ने अंतिम सांस ली। घर जिसका सब कुछ टूटा था वो थी केवल कमला जी। कल तक जितने सारे दर्द सह लेती थी आज वो भी चला गया, सब खत्म कर गया। और दो महीने बाद लगातार यही दुख झेलते झेलते वे भी संसार से चले गए। मृत्यु के पहले उन्होंने

जो एक दूसरे की गलतियां खोज रहे थे आज कहीं ना कहीं कहीं अपनी गलतियां देखने लगे थे। कहा भी है ना, किसी को एक उंगली दिखाने पर तीन उंगलियां अपनी ओर रहती है। और यहाँ तो यही हो रहा था। कल तक जो

विक्रम, हमें क्या किया तुमने? अपने माता पिता को ही खो दिया अपने लालच में। विक्रम और अमित का सीना भारी होगा। पहली बार दोनों ने महसूस किया कि वे वास्तव में अकेले पड़ चुके हैं। आगे सब अंधकार है,

पछतावा था और पछतावा उम्र भर था कि काश हमने समझा होता तो शायद हमारे माता पिता हमारे साथ होते। एक दिन अमित चुपचाप घर आया। उसने देखा कि विक्रम अकेला बैठा है, माता पिता की तस्वीर साफ कर रहा है। दोनों की आंखें मिली और बिना बोले आंसू बह गए। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, अमित माता पिता को तो खो दिया, अब नहीं चाहता कि तुझे भी खो दूं। अमित ने हाथ पकड़ते हुए कहा, भैया दिल में प्यार हमेशा था, बस लालच और गुस्से ने आंखों पर पर्दा डाल दिया था। दोनों पहली बार लंबे समय के बाद गले मिले। दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी।

0: बुजुर्गों ने उन्हें सलाह दी कि तोड़ने वाली ताकतें बहुत होती हैं, पर जोड़ने के लिए संगठन चाहिए। दोनों भाई उसी शाम गांव के किसानों की बैठक में शामिल हुए। वहां जमीन को जोड़कर खेती करने, आधुनिक तरीकों को अपनाने और एक ताजा संगठन बनाने पर चर्चा की। विक्रम बोला, हम दोनों ने जमीन बांटने की गलती की, अब हम इसे जोड़कर एक साथ खेती करेंगे। अमित ने समर्थन किया और गांव वालों के लिए भी एक किसान संगठन बनाएंगे ताकि कोई परिवार हमारी तरह ना टूटे, गांव तरक्की करे। हम सभी मिलकर ऐसी खेती करेंगे जिसमें कोई रसायन का प्रयोग ना हो। सोलर सिस्टम से हम पूरे गांव की बिजली की समस्या का निदान करेंगे। हम मिलकर करेंगे तो गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। साफ सफाई, शिक्षा, व्यवस्था, स्वास्थ्य, सबका प्रयास अपने परिवार के लिए नहीं अपने गांव के लिए करेंगे और गांव को आदर्श गांव बनाएंगे। यही हमारे माता पिता के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हमारी ओर से क्षमा याचना भी। गांव वालों ने तालियां बजाकर स्वागत किया।
1: बहुत खुशी।

को बाजार में उचित दाम मिलने लगा। युवक युवतियाँ गांव छोड़कर शहर जाने के बजाय यही रोजगार पाने लगे। रिश्तों में खटास कम होने लगी। विक्रम और अमित ने मिलकर राम नारायण कमला कृषि सहयोग समिति इस नाम से अपने माता पिता की याद में एक केंद्र बनाया। गांव में जब कोई लड़ाई या मनमुटाव होता तो लोग कहते, जाकर विक्रम अमित से बात करो, उनका घर टूटकर जुड़ा है, वे समझाएंगे। और इस सब के साथ गांव को देश के

संगठन की सभा में कहा, माता पिता को खोना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन उनकी यादों ने हमें एक कर दिया। हम समझ गए जमीन पैसे चीजें सब दोबारा मिल सकती है, पर इससे टूट जाए तो दोबारा नहीं बनते, और यदि बनते हैं तो संगठन एकता और प्रेम से ही बनते हैं। सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति की आंखें भर आई। गाँव के बच्चे आज भी कहानी सुनते हैं कि कैसे विक्रम और अमित ने लालच से घर को तोड़ा और प्यार और संगठन से फिर से बना लिया।

0: बोले जी आपने का किरोली दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगे अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ

अभी करेंगे अपने दिल की बात।

0: की किताब कभी सभी के जीवन से जुड़ी कुछ यादें,
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद केस सीधा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे
0: सुनना न भूले। कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के

की हजूर ही रहता है। खास कुछ बेताबना समझा देखे समय कहीं हमें चांदनी के शरारों का सफा खुश उनका करना के साथ भी पहाड़ों के पर्वतों लेती हमको पौधों की मुस्कुराहट तो वह ऐसी तस्वीर कहा।

इसे इस वक्त आप सुन रहे हैं छाया गीत। छाया गीत सुनकर कुछ ग्रहण आपको सुनाएंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

के साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। दोस्तों आज भी कार्य योगेश की पुण्यतिथि है तो उनको विविध भारती परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं और उनको याद करते हुए कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं उनके लिखे कुछ गाने। शुरुआत करते हैं उनके लिखे

0: से उसकी रंगोली हंसी की खनक जादू की महक बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगे अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम चलाएंगे स्मृतियों के बीच
2: बधाई हो
0: जिसमें के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग। हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल के बात। जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम चल रहा है पराने नए पुराने। इस वक्त आप सुन रहे हैं गीतकार योगेश के लिखे कुछ गाने।

finally finished with 50 because it's hard to change the state.

0: altro di che Holz Ritter.
1: Manchi,
0: che non va a

Podemos poner la ley de

Thank you.

साथ बैठ के अगले राज्यसभा इलेक्शन के बारे में क्या स्ट्रेटेजी होगा, क्या रणनीति होगा, हमारा कांग्रेस कैसे राज्यसभा में बैठ सके, ये बात करने के लिए हम इधर आया। हमारा उम्मीद ये होगा लोकल कैंडिडेट होना चाहिए,

सभी लोगों से अपील करना चाहूंगी, सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।

的地，我该从你的地。

0: क्यों के बीच
1: बधाई हो बधाई
0: जन्मदिन की जिसमें गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिन की बात तो जरूर सुनिएगा दो दिन विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे
2: आइए सुनते हैं छैला बाबू फिल्म का गाना किशोर कुमार आशा भोसले और साथियों की आवाजों में गीत आनंद बख्शी का है संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का

कार्यक्रम जयमाला में आपका फिर से स्वागत है। आपके सुनते हैं आपका भूखे की आवाज में खुशबू फिल्म का गाना, ये पुरस्कार का है संगीत आदि बर्मन का।

की राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं इंद्रधनुष के अंतर्गत गुलदस्ता। कार्यक्रम की शुरुआत राजेंद्र मेहता की गायी एक गजल के साथ कर रहे हैं कलाम बशीर भट्ट का है, संगीत शाहिद हुसैन खोड़े का।

0: Salut, tu as des fins?
1: Bonjour. Ce qui s'est réalisé en dernier, ce que j'ai reçu au pire en gros, je suis fictionnel. Tu gardes aussi mes lettres. Va te révoler, je vais finir ta tirole. Bonjour. Je vais t'arrêter que ce jour de Sarah Niaïngi. अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम चलाएंगे गीतों के बीच
3: बधाई हो बधाई
1: जन्मदिन की तुम्हारा, गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग, हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात। इससे जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: आइए सुनते हैं प्रद्युमान शर्मा की आवाज में ये गजल। कलाम राजेश जौहरी का है, संगीत प्रद्युमान शर्मा का।

0: द्वारा सर हे भगवान दोनों को समझाने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। अब तो ये बहुत है।
1: हे भगवान तुमने ये कौन से जन्म की सजा दी है जो ये मुसीबत हमारे खानदान में आ गई।
0: ये कौन सी मुसीबत?
1: अब मैं तुम्हें स्टैम्प पेपर पर एफिडेविट में लिख के दूं कि कौन सी मुसीबत? अभी वही मुसीबत जिसे बड़े चाव से बहु बनाकर चोली में डालकर इस घर में लाए थे।
0: अब क्या हुआ?
1: अभी वही जो रोज होता है। मैंने जरा सा डांट डबल दिया तो आगे से पूछती है क्या हुआ माता जी? हमारा भी जमाना था। तुम्हारी माँ मेरे बाल नोच कर मेरे हाथ में पकड़ा देती थी लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी पूछने की कि सासू जी क्यों बाल नोचे आपने? याद है ना तुम्हें?
0: हाँ याद है। अरे तुम्हारे हाथों में बालों का गुच्छा होता था और ये भी याद है कि मैंने एक दो बार वो बाल देखे तो पता चला कि वो बाल तुम्हारे नहीं मेरी माता जी के थे।
1: अरे वो तो मेरी शादी के एक हफ्ते बाद ही मैं और तुम्हारी माता जी आपस में इतनी घुल मिल गई थी कि सासू जी के बाल मेरे हाथ में और मेरे बाल सासू जी के हाथ में पहचानना मुश्किल हो गया था।
0: माँ कितना भाग्यशाली हूँ जिसे तुम्हारी जैसी पत्नी मिल गई। लेकिन अब ये तो बताओ तो बहू ने जो पूछा था कि क्यों डांट रही हो तो तुमने क्या जवाब दिया?
1: जी मैं पूछती हूँ सास को क्या हर बार बताना पड़ेगा कि उसने बहू को क्यों डांटा? अरे ये तो सास का मूड है मन किया तो डांट दिया लेकिन बहू कौन होती है सास से पूछने वाली? हाय हाय 6 महीने हो गए इस बहू को हमारे घर आए हुए इसने तो सवाल जवाब कर करके मेरा नाक में दम कर दिया। हे भगवान अब तो तू मुझे उठा ले भगवान।
0: इस बहू को ठीक करना है तो सास वाला वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपनाओ और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा।
1: क्या यानी कि मैं बहू को जला दूं?
0: अरे धीरे धीरे बोल सुन ना ले यही तो एक तरीका है जो

0: के बहू पर उस वक्त सड़क देती है जब बहू अपने ध्यान में कोई काम कर रही होती है। उस वक्त बहू को ये नहीं पता चलता कि उस पर किसी ने कुछ छिड़का है।
1: फिर ये बताओ माचिस कब जलाऊं?
0: पर माचिस जलाने की कोई जरूरत नहीं, यही तो खूबी है केरोसिन में, सारा सिस्टम
1: ऑटोमेटिक।
0: केरोसिन छिड़कने के कुछ घंटे के बाद पहले बहू को चक्कर आएंगे और फिर 24 घंटे के बाद वो अपने आप दे जाएगी।
1: अपने आप दे जाएगी? अरे हरीश के जैनी, फिर तो मैं एक दो घंटे पहले ही भाषण मंदिर चली जाऊंगी। मैं उधर मंदिर में आरती उतार रही होंगी और मेरी बहू घर में चक रही होगी।
0: हरीश को पता है कि तुम दोनों सास और बहू एक दूसरे से नफरत करती हो।
1: हाँ, ये तो सभी को पता है।
0: बहू जलेगी तो पुलिस को सबसे पहले तुम पर ही शक हो
1: जाएगा।
0: अरे इसीलिए ये केरोसिन छिड़कने के बाद तुम बहू से प्यार करना शुरू कर दो, दिन में प्यार, दोपहर को प्यार, रात को प्यार, ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि तुम बहू से नफरत नहीं उससे प्यार करती हो। जब बहू जलेगी किसी का तुम पर शक ही नहीं जाएगा।

0: čemu i nemi pa li dano ga jo, nemi ala de, pa ti saj se se zirao, je dole, ta ga lima pala, je ti utartaj ni, ar me to tera ek bebel to vod kismet pati, lekin tum, ek bau hoka, paap ko čekane ne lega meni,
1: lekin me kabi ka vokku.
0: Arre beti, tum hi to ho, jo in ghar me kuch kar sakti ho.
1: Aapka matlab hai?
0: Arre, ji samaj rahi ho, bilkul ji samaj rahi ho.
1: वजन नहीं ये कैसे हो सकता पिताजी इस सांप तो बहू को जला सकती है लेकिन बहू सांप को कैसे जला सकती
0: है क्यों नहीं जला सकती वक्त बदल रहा है जमाना बदल रहा है
1: पिताजी जैसे घोड़े पर बैठकर दूल्हा आता है दुल्हन नहीं आती जैसे दुल्हन डोली में बैठकर ससुराल जाती है दूल्हा नहीं उसी तरह एक सांप तो बहू को जला सकती है लेकिन बहू सांप को नहीं जला
0: लेकिन ये रिवाज बदलना होगा
1: मुझे पिताजी मैं नहीं कर सकती मुझे डर लगता है पकड़ी जाऊंगी मुझे घाटा हो जाएगी
0: मतलब है बहू तुम्हें उस केरोसिन के बारे में अभी तक नहीं पता चला तो मार्केट में आ गया ये देखो
1: सांस को चलाने के लिए स्पेशल केरोसिन ऑयल और तो क्या मतलब
0: ये वो केरोसिन जो बहू की कुर्सी से सांस को उस वक्त चलती है जब सास अपने ध्यान में कोई काम कर रही होती है उस वक्त सास को ये नहीं पता चलेगा कि किसी ने कुछ छिड़का है माचिस जलाने की कोई जरूरत नहीं यही तो खूबी है केरोसिन में सारा काम ऑटोमेटिक पहले कुछ घंटे बाद सांस के घुटने कांपने लगेंगे उसके बाद जब केरोसिन छिड़के हुए 24 घंटे हो जाएंगे तो सांस अपने आप जल जाएगी
1: तो मैं अपने फ्रेंड्स के घर किसी पार्टी रखा देती हूँ मैं एक घंटा पहले ही भाग कर फ्रेंड्स के घर चली जाऊंगी और इस वक्त मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ किसी पार्टी अटेंड कर रही होंगी और उस वक्त उस दिए सासू के घर में चल रही होंगी
0: हर एक को पता है कि इस घर में सास और बहू एक दूसरे से नफरत करती हैं।
1: हाँ, सभी को पता है।
0: जिस वक्त तुम्हारी सास जलेगी पुलिस को सबसे पहले शक तुम पर जाएगा
1: हाँ, मैंने सोचा
0: इसलिए केरोसिन छिड़कने के बाद जब तक तुम्हारी सास जल नहीं जाती उससे प्यार करना शुरू कर दो
1: तो प्यार
0: हाँ सवेरे प्यार दोपहर को प्यार शाम को प्यार
1: प्यार और कभी नहीं और लोग क्या कहेंगे बहू होकर सास
0: समझा भी करो बहू असली प्यार नहीं ऊपर ऊपर का प्यार

0: चाहता है आप हर वक्त मेरे सामने निकल रहे हैं और मैं आपको देखा होती रहूँ।
1: बहू तू ठीक तो है ना?
0: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ माता जी।
1: ओ अभी इसको केरोसिन का असर नहीं हुआ क्या?
0: अच्छा अभी चक्कर नहीं आएगा जैसे क्या क्या कहूँ माता जी?
1: कुछ नहीं बेटी कुछ नहीं, बैठ बैठ
0: नहीं मारेगा इससे चक्कर? मुझे चक्कर क्यों आएगा?
1: आएंगे बेटी आएंगे, जरूर आएंगे।
0: मेरी बहू को चक्कर जरूर आएंगे। मेरी बहू को नहीं आएगी तो और किसी
1: आएंगे? छह महीने हो गए शादी को।
0: छह महीने शादी को हो गए माता जी? वो छोड़िए माता जी, अब आप बताइए ना आपको कुछ है ना?
1: मुझे क्या हुआ?
0: आपके घुटने तो नहीं काँप रहे?
1: मेरे घुटने? घुटने क्यों काँपेंगे?
0: काँपेंगे माता जी, जरूर काँपेंगे।
1: अब वो

सुनाती हूँ। जब कोई प्राणी संसार से जाने लगता है

थी एक दिन का प्यार, इसके लेखक वी एम आनंद, निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे।

kind of

करते हैं, छेके के गाय उस गाने को

0: से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीपके। जिसमें के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग। हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात। तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
2: आइए सुनते हैं एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी फिल्म का गाना पलक मुछाल की आवाज़ में गीत मनोज मुंतशिर ने लिखा है, संगीत

ज्यादा राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रणकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और समीक्षा प्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस तथा

यहाँ पर महत्वपूर्ण G7 और G13 की

0: उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
1: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान

स्वस्थ करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी सर को भी किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमें जिम्मेवारी दिया था कुछ दिन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हें भी काम ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में पकड़ना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारे प्रयास।

केवल अपना अवैध नीच प्रवेश पर रद्द करना

सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत में मातृ और शिशु स्वास्थ्य पोषण तथा

celebration.

नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट अकादमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि एआई की वाइस एडमिरल अजय कोटर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोटर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि

ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

चावल से लहसुन त्रिकोण मूवमेंट पीटीएम के कार्यकर्ता और जिला अफ्रीकी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी और निशा प्लास्टर ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खरी सिंह और आरोन साई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबले समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15 ओवर में 5 विकेट पर 133 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज

Singapore Open बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ग्रुप प्रतिभा और प्रणीत चक्रा को मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और आईसीओ टिक्स में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या

राष्ट्र सेवा देश की सुरीली धड़कन आयोजित कार्यक्रम आपके लिए।

0: दो जुड़े विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की बरसात पर 2 जून को।
0: हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष अतिथि 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ।

ভূমিকা নির্বাহ।

0: अभिनय यात्रा के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: देखिए, मैंने प्री इंजीनियरिंग किया है, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करने से पहले का मकाम होता है। हाँ, उसमें मैंने कॉलेज को टॉप जरूर किया था, लेकिन काफ़ी मेहनत और काफ़ी अर्से के बाद। और शौक लेकिन हमेशा से मुझे एक्टिंग का रहा था, कि मेरे पिता कॉलेज में प्रोफेसर थे, उन्होंने मेरा साथ दिया और कहा कि तुम जो करना चाहते हो ज़िंदगी में करो। तो फिल्म इंस्टीट्यूट में और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अप्लाई किया गया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में उन्होंने मुझे पता किया, फिल्म इंस्टीट्यूट वालों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने सेलेक्ट कर लिया था। और इस तरह से मेरी तालीम वहाँ पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में शुरू हुई, और 3 साल की तालीम हासिल करने के बाद मैं एक प्रोफेशनल

1976 में पंकज कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। इस बार वो रंगमंच की गंभीर दुनिया में समा गए। दरअसल फिल्मों से पहले उनकी पहली प्राथमिकता रंगमंच। 1982 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में काम करने का मौका उन्हें मिला। भूमिका छोटी थी, लेकिन इस फिल्म के हिंदी वर्जन के लिए गांधी की यानी बेन किंग्सले की आवाज बने थे पंकज कपूर।

गांधी संयंत्र बनने का सिलसिला हिंदुस्तान में शुरू हुआ, तो ऋषि दत्तन बरा जो उसके डायरेक्टर थे वो हमारे रेपर्टरी कंपनी में नाटक देखने के लिए आए, और उन्होंने नाटक देखने के बाद एक रोल के लिए मुझे चुना अपनी फिल्म में। रोल तो बहुत छोटा सा था, गांधी जी के दूसरे सगरे से प्यारेलाल, फिल्म में प्रेजेंस थी ज़्यादा, परफॉर्मेंस तो बहुत खास नहीं था, लेकिन उस फिल्म के जरिए जो मौका मुझे मिला वो मौका था गांधी के रोल की डबिंग करने का। हिंदी में जो गांधी जी डबिंग की गई है बैंकिंग के लिए जो रोल थी वो मैंने की थी। उस वक्त तो वो बड़ा चैलेंजिंग काम था, क्योंकि अंग्रेजी जबान से हिंदी जबान में आप डब करेंगे उसको अत्यंत भी परफेक्ट होना चाहिए, और 22-21 साल की उम्र से लेकर करीबन 78-77 साल की उम्र तक के गांधी जी को आवाज़ के जरिए दर्शाना सिनेमा में वो एक चैलेंजिंग काम ज़रूर था जो मुझे मिला। तो ये मेरा पहला मौका था या पहला चांस था फिल्मों के अंदर

तमाम नाटकों में विभिन्न भूमिकाएं अदा की। फिल्म मकबूल में काम करने के लिए पंकज को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला था। 2003 में रिलीज फिल्म मकबूल में पंकज कपूर ने जहांगीर खान

0: सही में निभाई है। 1985 से टीवी पर करमचंद की शीर्षक भूमिका में वो बेहद लोकप्रिय हुए थे। उनका मैनरिज्म इस कदर प्रसिद्ध हुआ था कि बच्चे बच्चे की जुबान पर करमचंद का नाम था और उनके कैरेक्टर की नकल वो खेल कूद में भी किया करते थे।
1: अभिनय में ये बात बड़ी जरूरी है कि आप कितना भी डूब गए हों अपने किरदार में, एक धागा या एक थ्रेड जिसको कहते हैं, ऐसा हमेशा रहना चाहिए जिसमें आपको इस बात का एहसास रहे कि आप वो किरदार नहीं हैं। आप हैं तो पंकज कपूर हैं, लेकिन आप उस किरदार को निभा रहे हैं। निभाते हुए जब आप उसको निभा रहे हैं, उस वक्त लोगों को ये ना लगे कि आप पंकज कपूर हैं। तो वो एक हल्का सा धागा जो है आपके और आप कैरेक्टर के दरमियान बना रहता है, और वो बनाए रखना जरूरी है। अगर ना रहे तो या तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा, या फिर आप इतने इतने डूब जाएंगे कि उसमें से निकलना मुश्किल हो जाएगा।

0: सुना रहे हैं वो गाने उन पर फिल्माए तो नहीं गए हैं, लेकिन उनके जरिए हम पंकज कपूर के बेहतरीन अभिनय ज्यादा कर ही सकते हैं। सुधांशु और सुधीर मिश्रा के धारावाही कब तक पुकारू में पंकज कपूर ने मुख्य भूमिका अदा की थी। ये धारावाहिक रांगे राघव के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित था। सुखराम की जटिल भूमिका को पंकज कपूर ने बड़ी कुशलता और बड़ी सरलता से निभाया था। इसी तरह डॉक्टर राही मासूम रजा की कृति नीम का पेड़ पर आधारित टीवी सीरियल में बेहद चुनौतीपूर्ण भूमिका अदा की थी पंकज कपूर ने। इन दोनों किरदारों को पंकज बेहद चैलेंजिंग मानते हैं।
1: बड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि एक तो अवधि मुझे बोलने नहीं आती है और अवधि में वो काम करना था, और दूसरा एक ऐसे आदमी का किरदार था जो बेगार है, और ये आज भी जिसको बॉन्डेड लेबर कहेंगे हम आज के ज़माने में, आज भी लोग हैं, लेकिन वो कहानी चूँकि 40 की थी तो उस ज़माने के दौर के अंदर उसकी अपनी सोच, उसकी अपनी समझ, उसका अपना बिहेवियर, उसकी अपनी एम्बिशन और ये सब चीज़ें दर्शाने में बड़ा ही एक अलग किस्म का लुत्फ महसूस हुआ। और एक और टेली फिल्म मैंने की थी जो भी बहुत कम लोगों ने देखी है, उसको केतन मेहता साहब ने डायरेक्ट किया था, किसी एक फूल का नाम लो। उसमें पाठक नाम का एक राइटर है, वो भी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टराइजेशन है और एक इंटरेस्टिंग स्टडी है किसी एक इंसान की। तो ये कुछ रोल हैं जिनको करने में बड़ा मजा आए।
0: 1991 में तपन सिन्हा की फिल्म एक डॉक्टर की मौत में भी कमाल किया था पंकज कपूर ने। भूमिका थी डॉक्टर दीपांकर राय की।
1: तपन सिन्हा साहब जो डायरेक्टर थे डॉक्टर की मौत के, उन्होंने राख फिल्म देखी थी और उसी को देखने के बाद उन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए रोल ऑफर किया। अब तपन सिन्हा साहब तो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बड़े जाने माने, बहुत अच्छी फिल्में, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बंगाल में बंगाली में बना चुके हैं। और लेकिन मेरा इसरार हमेशा से जैसे स्क्रिप्ट पर रहता है, तो स्क्रिप्ट मुझे उन्होंने मुहैया करवाया, मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे रोल बहुत अच्छा लगा और मैंने उनसे कहा मैं करना चाहूँगा। तो ऐसे उस फिल्म में दाखिला हुआ मेरा। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि शबाना इसमें दूसरा रोल कर रही है, फीमेल कैरेक्टर कर रही है। और करीबन 40-45 दिन की शूटिंग थी हमारी बंगाल में, ज़्यादातर काम कलकत्ते में था और कुछ चांदीपुर में, कुछ दिनों का आउटडोर था। तो शबाना बहुत प्रोफेशनल एक्ट्रेस हैं और उनके साथ बड़ी ही अच्छी प्रोफेशनल रिलेशनशिप हमारी रही। और तपंदा बहुत ही अच्छे इंसान हैं और ऐसे निर्देशक हैं जो अपने अभिनेता को बहुत सी छूट देते हैं और ऐसा माहौल बनाते हैं उसके लिए जिसमें वो अच्छा अभिनय कर सके। तो कुछ टेक्निकल चीज़ें भी इस फिल्म के अंदर थी जिसको लेकर के कुछ डॉक्टर थे वहाँ कलकत्ते के लोकल, जिन्होंने हमारी बड़ी मदद की और हमें उसके बारे में पूरा नॉलेज वगैरह दिया गया, जो कि इस किरदार को निभाने के लिए हासिल करना बहुत ज़रूरी था।
0: थिएटर के दौरान पंकज ने नाटक एक रुका हुआ फैसला में बेहतरीन काम किया था। आगे चलकर इसी नाटक पर आधारित एक फिल्म भी बनी थी।
1: उससे पहले हमने एक नाटक किया था एक रुका हुआ फैसला नाम से, तो उसके जो डायरेक्टर थे और मेरे मित्र भी थे जिनके साथ मैंने सबसे ज़्यादा काम थिएटर में किया है, रंजीत कपूर साहब, वही इस फिल्म को लिख रहे थे। तो जब कास्टिंग की बात आई तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया। और दरअसल मैं फिल्म में ओरिजिनली जो रोल ओमपुरी साहब ने किया है आहूजा का, वो करने वाला था, लेकिन बाद में तनेजा का रोल जो कर रहे थे उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया, या तो इन लोगों ने

0: लो तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो मुझे कोई एतराज नहीं था क्योंकि मुझे तो अभिनय करना था। इस तरह से ये फिल्म मेरे हाथ लगी। उस फिल्म का एक किस्सा जरूर मैं आप बताना चाहूँगा। उसमें एक सीन है जिसमें बिल्डर और कमिश्नर और ये सब लोग एक खुली लिफ्ट में ऊपर बिल्डिंग में जा रहे हैं और उस वही खतरनाक फिल्म की लिफ्ट थी जो कि एक सिर्फ एक तार से टंगी हुई थी। और शूटिंग खत्म हो जाने के बाद अगली शूटिंग हमारी कुछ बीच में माले पे थी, तो वहीं जो बिल्डर साहब के बेटे थे उन्होंने कहा कि इसी लिफ्ट में लग के ऊपर चले चलते हैं और ये लिफ्ट ऊपर लैंड कर जाएगी लैंडिंग पे, वहाँ से आप उतर के फिर नीचे दो फ्लोर उतर के चले जाइएगा। तो करीबन 20 लोग उस लिफ्ट के अंदर चल रहे मेरे मना करने के बावजूद, लेकिन उसने कहा कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना वेट से चली जाता है। और फिर जब लिफ्ट पांचवें छठे माले तक ऊपर गई तो जाके वहाँ हवा में अटक गई और हम सब लोग 20 के 20 लोग हवा में लटक रहे थे। और ये बिल्डर साहब का बेटा भी हमारे साथ था। जब वो लिफ्ट वाले से कहता था कि भाई इसको ऊपर लो तो लिफ्ट वाला बाएं देखने लगता था, जब उससे कहता था नीचे लो तो दाएं देखने लगता था। फिर कुछ देर वहाँ लटकने के बाद उन्होंने कहा कि भाई इसको किसी तरह से बिल्डिंग के पास ले लो। जब बिल्डिंग के पास लिया गया तो मैंने सबसे रिक्वेस्ट की कि भाई कोई भगदड़ ना मचाए और एक एक करके आराम आराम से उतरे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सब ने भगदड़ मचाई और ये ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है कि किसी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ या कोई मरा नहीं, क्योंकि बिल्डिंग और उस लिफ्ट के दरमियान करीबन 1 फुट का फासला था। जब हम उतर के ऊपर लिफ्ट वाले के पास पहुंचे और पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने बताया कि तार कट रहा था, आधे से ज्यादा तार कट चुका था। अगर वो ऊपर की तरफ खींचता तो भी टूट जाती लिफ्ट, अगर वो नीचे की तरफ जाने देता हमें तब भी लिफ्ट टूट जाती और हम सब लोग मर जाते। तो ये एक हादसा जरूर मुझे याद है जो जिंदगी भर याद है।
1: 1989 में फिल्म राख में काम करने के लिए भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया था पंकज कपूर को। याद होगा इस फिल्म में पंकज के साथ आमिर खान ने भी काम किया था। उनके कुछ चर्चित धारावाहिक हैं ऑफिस ऑफिस, जवान सवाल के, दुनिया वगैरह वगैरह। इससे पहले उन्होंने फटीचर, मोहनदास पीएलएलबी, वाह भाई वाह, साहब जी दीदी जी और गुलाम जी में अभिनय किया था और काफी कामयाबी हासिल की थी। गुलजार द्वारा मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान के टीवी रूपांतरण में होड़ी की एक यादगार भूमिका भी पंकज कपूर ने टीवी पर अदा की थी। आपने जरूर देखा होगा।

कपूर का फिल्म जस्ट। दोस्तों सन 2007 में पंकज कपूर की तीन फिल्में आपने जरूर देखी होंगी, धर्म, द ब्लू अम्ब्रेला और अल्लाह बोल में भी पंकज जी नजर आए थे। एक फिल्म बनी थी सन 2011 में जो ऑफिस ऑफिस सीरियल का ही एक प्रतिरूप थी और इसका नाम

मशहूर फिल्म मटरू की बिजली का मंडोला में भी आपने पंकज कपूर के अभिनय का जलवा जरूर देखा होगा।

जाती है।

Thế thì cái việc xử lý cầu

0: के कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे।
1: न भूले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ

0: को मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई
0: जन्मदिन की गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग। हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली।